0: 6662596। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
0: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
0: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing, it's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. Sab एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

All right, welcome back, ladies and gentlemen. This is the Pop Station by Prem Joshi. I hope you're having a beautiful Saturday evening with your friends, family, and loved ones. Dinner ke liye ja rahe, get togethers ke liye ja rahe, koi grocery shopping karne ja rahe ho, jo kuch bhi kar rahe ho, aap hume sun rahe ho. You're making us part of your amazing journey. Thank you so much to all the amazing callers. Just an FYI, ladies and gentlemen, jo aap log ne agar hume nahi suna break ke pehle. मैं आपको अभी से बता देता हूं 85% आई कैन से 90% ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी हैव प्लेड सो फार आर ऑल रेकमेंडेड बाय आवर अमेजिंग लिसनर्स सो थैंक यू सो मच और अगर आपने अभी तक कोई गाना नहीं सुना हो जो आपको पसंद आए लेट अस नो हिट अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कॉल अस ऑन आवर स्टूडियो लाइन 972-235-5555 एंड वी विल प्ले योर सॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर ऑफकोर्स प्रेम जोशी पॉडकास्ट PREM JOSHI podcast on Instagram, Facebook and YouTube. DMs are open. Next gana, Mariam ne recommend kiya hai Ua Ua by Anaida. This is my first time listening to the song. So I hope I enjoy this one and I hope you all enjoy this as well.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. If you're craving the flavors you grew up with, Hoco, one of the India's most loved food brands, is now open in Frisco, Texas. Enjoy iconic favorites like chana puri, sandwiches, delicious curries, and the legendary Hoco Cold Coco. भाई यार मेरे को तो नहीं पता ये कोल्ड कोको क्या है, बट ये नाम से एकदम बढ़िया लग रहा है. मैं खुद जाने वाला हूँ यार यहाँ पे. विजिट 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 फ्रिस्को और एक्सप्लोर द मेन्यू एट Hoco. Come hungry and leave with the taste of India. Kya baat hai yaar. 20% student discount with a valid student ID and a 20% discount for employees on lunch pack. Available Monday through Friday during office hours. Hoco, Frisco, Texas. Next gana mereko recommend kiya hai. Prashant ne chudi karke gana hai. And the iconic Navratri Queen, Garba Queen. Falguni Pathak ka gana hai yaar. And she's going to be coming to our town as well. So I'm looking forward to that. Ladies and gentlemen, this is the Sunday. वैसे ये संडे पॉप स्टेशन जो मेरा नाम है, क्योंकि हम ये शो 8 से लेके 10 संडे को करते हैं, बट आज स्केड्यूल में है शिफ्ट. सो सिर्फ आज हम बोलेंगे पॉप स्टेशन विथ प्रेम जोशी. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. एंड यू कैन हिट अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, @ प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI पॉडकास्ट.

0: सच एन अमेजिंग सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो। उफ क्या गाने रेकमेंड किया यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग सिंस 6:30 PM आर रेकमेंडेड बाय आर अमेजिंग लिसनर्स ऑफ माई शो। थैंक यू सो मच यार। एक स्पेशल स्पेशल शाउट आउट फ्रॉम प्रेम। आई रियली आई हैव हार्ट फेल्ट थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड टू ऑल द यू नो साइलेंट लिसनर्स एज वेल। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मेरे गाने बजा रहे हैं एंड आई एम रियली रियली अमेज्ड विथ ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग ऑन द DMs एज वेल। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक बहुत ही अमेजिंग गाना मेरे को रेकमेंड किया है। आई एम ऑलमोस्ट लॉस्ट द नेम बट आई थिंक इट वॉज राजेश। सो राजेश, अगर आपका मैंने नाम सही नहीं लिया तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। बट उन्होंने बहुत ही एक आइकॉनिक सॉन्ग रेकमेंड किया है, मान मेरी जान फ्रॉम किंग।
1: अब नहीं हो सकता, तुम बस मूव ऑन कर जाओ।

All right, ladies and gentlemen, I have to move forward with the next song because यार एक और request आ गया and we are heading towards a short commercial break. इसके बाद कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 9 बजे तक and we are also going to be playing a Bollywood quiz. So make sure you keep tuned in and follow us on Instagram and Facebook. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. आज एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई, वो एपिसोड अपलोड हो चुका है. वी टॉक्ड अबाउट नंबर 1 से लेके 31, ऑल द डेट ऑफ बर्थ्स. वी टॉक्ड अबाउट लव, करियर, रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी. बहुत ही आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था. शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बेस्ड इन दिल्ली एंड शी हैज कम टू डैलस एंड वी हैड दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PremJoshi पॉडकास्ट. नेक्स्ट गाना इज ऑफकोर्स तरुण ने मेरे को रेकमेंड किया है, सुनो तो दीवाना दिल.

0: हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं जाएगा नहीं, तानिया का गाना रहेगा पहला आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक, बट आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today. What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
4: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
5: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: बेटा 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
0: Welcome back, ladies and gentlemen. Devi or Sajano, bhaiyo behno, this is the Pop Station with Prem Joshi. I hope you are having an amazing Saturday evening with your friends, family and loved ones. Kuch log ja rahe grocery shopping ke liye pure hafte ke liye, kuch log ja rahe dinner ke liye, kuch log dinner se wapas aa rahe, kuch log get together ke liye ja rahe. Aap jo kuch kar rahe yaar, aap humko sun rahe, mere show ko sun rahe, uske liye tahe dil se dhanyawad. Thank you. थैंक यू सो मच. एंड ऑफकोर्स मेक श्योर यू कॉल अस यार, कॉल कीजिए, मेरे साथ बातें कीजिए. बहुत सारे लोगों ने बोला प्रेम भाई एकदम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज याद आ गई है. अगर मेमोरीज याद आ गई है तो शेयर करो वो मेमोरी, ताकि मैं डैलस वासियों के साथ आपकी बातें शेयर करूँ, हम भी मजे लें, डैलस भी मजे लें और आप भी मजे लें आपकी स्टोरी सुन के, आपका नाम सुन के ऑन द एयर वेव्स ऑफ फनेशिया. 972 8255555. Make sure it's a pop album songs and not from the movies. Abhi hamara pop segment chal raha hai. I know quite a few people want to hear some hit Bollywood music, but yaar wo to hum bajate hi rehte hain. Ye show thoda special hai. Ye show hai wo segment ke liye from the albums jo gaane hamari लाइफ को एकदम ताज़ा कर दिया है. स्पेशली ऑल द मिलेनियल्स आउट देयर, द 80s एंड द 90s किड्स आउट देयर, वी नो द पॉप सॉन्ग्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉप सॉन्ग्स इन आर लाइफ एंड इन आर डे टू डे लाइफ, राइट. 9722355555. पहला गाना ये सेगमेंट का तानिया ने रिकमेंड किया है, पिया बसंती बाय के एस चित्रा.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोगों ने मेरे को फोन करके पूछा है कि यार आपका नाम क्या है. ओके सो यस, मेरा नाम है प्रेम जोशी एंड आई डू माय रेगुलर शोज एवरी संडेज 8 to 10, बट आज थोड़ा सा स्केड्यूल में है शिफ्ट, इसलिए आज और आप मेरी आपकी और मेरी मुलाकात हो गई सैटरडे को एंड आई एम लविंग इट लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉलर्स एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द साइलेंट लिसनर्स आउट देयर, जो चोरी चोरी छुपके छुपके तो नहीं बट ऑफकोर्स आप हमें सुन रहे हैं. So thank you so much. Whatever you're doing, you're going for your dinners, you're going for your get-togethers, you're going for your grocery shopping, but you're listening to us. Thank you so much. But yeah, well, this is my show. We always play the pop segment from the 90s, 2000s, and even today. अभी मेरी ऋषिकेश से बात हुई, उन्होंने मेरे को गाना recommend नहीं किया, but सिर्फ मेरे को एक comment और feedback के लिए मेरे को phone किया और बोला कि यार प्रेम भाई बहुत मजा आ गया. इंस्टेंट कर्मा, लकी अली, यूफोरिया, शान, सोनू निगम, हरिहरन, शंकर महादेवन, कुमार सानू, अलका याग्निक, लेस्ली लुइस, बली सागू, सिल्क रूट, अलीशा चिनॉय, दिलेर मेहंदी, सुनीता राव, ये सब हमारे आर्टिस्ट हैं यार. एंड आई राइटली आई एम विथ यू ऋषिकेश एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस विथ सम मेलोडीज. थैंक यू सो मच फॉर रिवाइविंग दोज अमेजिंग अर्ली 2000s एंड 90s. सो ऋषिकेश थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग मैसेज. DMs आर ओपन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको गाने के रिकमेंडेशन DM पे भी आ रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट. नेक्स्ट गाना कभी तो नजर मिलाओ.

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बैक टू बैक सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो ये गाना थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन कीप हिम कमिंग। 972-235-5555 नुपुर ने मेरे को रेकमेंड किया है, कभी यादों में आओ। इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम एन आइकॉनिक एल्बम, संग बाय अभिजीत भट्टाचार्य।

All right, ladies and gentlemen, कितने सारे कॉल्स आए हैं. आई हैव ट्राइड टू पिक अप ऑल द कॉल्स. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. उफ, बैक टू बैक कॉल्स. अभी भी एक कॉल आ रहा है जैसे मैं आई एम ट्राइंग टू स्पीक. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. आई विल ट्राई टू स्पीक टू एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कॉल्ड द लाइन, टुक एन एफर्ट टू पिक अप द फोन एंड डायल अस एंड रेकमेंड अस अ सॉन्ग, शेयर एन अमेजिंग मेमोरी, व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग. थैंक यू. दिस इज फन. दिस इज द मोस्ट amazing time of my week when I'm spending time in the studio talking to all the amazing folks in the Dallas area who are listening to our songs, who are listening to our shows. Keep them coming, ladies and gentlemen. 972-235-5555 is the studio ka number. And you can also follow us on Instagram and Facebook and YouTube. Aap pe bhi aap hume DM kar sakte. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. Abhi mere ko call aaya. Dekho, when the millennials and the Gen Z's call, it's amazing. But when our amazing new generation calls me, that's even more fun. So all the parents who are trying to, you know, recommend the music that we hear, you guys are doing a great job. Abhi mere ko Ivan ne call kiya hai, who's just 11 years old and has suggested me a song. So here we go, Ivan, your song, 1,000 Miles by Yo-Yo Honey Singer.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो।
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
8: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट। सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
12: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. 3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: यहाँ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
14: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट सिग्नेचर क्विजिन .net. Signature cuisine. Our taste for apna signature.
15: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
14: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
16: हाय, दिस इज सैफ अली खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

कैसे समझाऊं मैं ये नई जनरेशन को, ये गाना कितना बड़ा वायरल था बिफोर द टर्म वायरल. दिस सॉन्ग यूज टू बी ट्रांसफर्ड वी हैव ब्लूटूथ बैक इन द डे वी डिड नॉट हैव द स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग. और कॉलेज डेज में जब लोगों के पास नोकिया और सोनी एरिक्सन के फ़ोन्स हुआ करते थे, तब ये गाना हर एक के फोन में हुआ करता था. एंड गजेंद्र सिंह वॉज ऑफ कोर्स सो पॉपुलर बैक इन द डेज, एंड दिस सॉन्ग इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग. थैंक यू प्रियंका. और अगर प्रियंका की तरह आपके पास भी ऐसे कोई आइकॉनिक पॉप सॉन्ग्स हो, लेट अस नो यार. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. एंड इफ यू ऑल आर लविंग आर शो, विच सो मेनी ऑफ यू हैव कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. न्यूमरोलॉजिस्ट, एक गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट से आज हमने बात की, और वो एपिसोड अभी लॉन्च हुआ है दिस आफ्टरनून. मेक श्योर यू लुक एट इट, बिकॉज आपका डेट ऑफ बर्थ कैन टेल यू व्हाट योर लव कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप करियर वेल्थ इज गोइंग टू बी. एंड इट वाज सच एन आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन. इट्स वेरी एंटरटेनिंग एज वेल, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल. इट जस्ट गिव्स यू अ सेकेंड लेंस टू लुक एट लाइफ. और बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन था. सो मेक श्योर यू गो देयर ऑन यूट्यूब. पूरा का पूरा एपिसोड लाइव है, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. इट्स अ ग्रीन कलर लोगो. नेक्स्ट गाना, चढ़ती जवानी तेरी.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। यूजुअली हमारा शो होता है हर संडे 8 से लेके 10 बजे तक रात को, बट आज स्केड्यूल में है शिफ्ट, इसलिए आज मेरे को मौका मिला आप सबसे बात करने का ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल सैटरडे। आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, लव वंस। काफ़ी सारे लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं फॉर द वीक, सम पीपल आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, सम पीपल आर गोइंग फॉर द गेट टुगेदर्स। वट एवर यू आर डूइंग, यू आर लिसनिंग टू अस, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू आर शो, यू आर लिसनिंग टू आर सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। आज बहुत ही अमेजिंग डे था, बहुत ही अमेजिंग शो था सो फार, बिकॉज 95% ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी हैव प्लेड आर सजेस्टेड बाय आर अमेजिंग लिसनर्स ऑफ डैलस फोर्ट वर्थ। सो थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दीज अमेजिंग पॉप सॉन्ग्स। कितने सारे ऐसे गाने हैं तो जो मैंने बजाया, मुझे ऐसा लग रहा था यार ये 10 साल से मैंने नहीं सुना, ओ माई गॉड 15 ईयर्स से नहीं सुना। So thank you for refreshing my memory and making me sure that I play some amazing jam that everybody likes it. Next gana, Made in India, bajane wala ho. Bidu ne produce kiya ye gana, and of course everybody would know who this amazing singer is, but there's a reason why I'm not going to be saying the name, because मैं जब ये गाना बजाने वाला हूँ, आज थोड़ा हमारा दिल बड़ा हो गया यहाँ पे because of our amazing sponsor, that is Fun Pizza Kitchen. तो $10 का गिफ्ट कार्ड है, जो भी मेरे को सबसे पहले कॉल करके बोलेगा ये आर्टिस्ट का नाम क्या है, ये सिंगर का नाम क्या है जो ये मैं गाना बजाने वाला हूँ, ठीक है। मेड इन इंडिया गाने का नाम है, आपको सिर्फ मेरे को बोलना है आर्टिस्ट का नाम क्या है। 972-235-5555 972-235-5555

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 15-16 कॉल्स आ चुके हैं. मैंने जितना हो सके मैंने सबसे बात की यार, बट ऑफ कोर्स 10 सेकंड में मेरे को सोमा ने राइट आंसर दे दिया. शायद मेरी गलती यार, बहुत इजी सवाल पूछ लिया मैंने. बट थैंक यू सो मच टू ऑल द अमेजिंग कॉलर्स एंड लिसनर्स. नाराज मत होइए, हताश मत होइए, बिकॉज मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वी डू द बॉलीवुड क्विज एवरी सिंगल वीकेंड बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग स्पॉन्सर्स. इस बार के हमारे स्पॉन्सर्स है फन पिज्जा किचन, एंड बिकॉज ऑफ them we do this Bollywood quizzes. So make sure you follow us on Instagram and Facebook, क्योंकि हम एक छोटा सा है ना उसका हिंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. इस बार के स्पॉन्सर फन पिज्जा किचन, एज आई मैंशन, दे हैव अ न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा, pizzas that are like a full-on flavor fiesta, right? It's called the Fiesta Veggie, Fiery Polo Loco, Seafood Pack, Sinor, Camaro, and much more. So make sure you go and check them out at Fun Pizza Kitchen in Frisco. Next gana is Baba Sehgal ka mereko gana ka recommendation hai, Thanda Thanda Pani.

ये वेदर ऐसा है कि ठंडा ठंडा पानी की सबको जरूरत है. व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स एक आइकॉनिक सॉन्ग से लेके दूसरा आइकॉनिक सॉन्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग यार. और आधा घंटा है हमारे शो के लिए. मैं जितने गाने हो सके पैक कर दूंगा. कीप योर रिकमेंडेशंस ऑन 9722355555. दिस इज द पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो एज मच एज आई एम by playing the songs that you guys are recommending me through my phone, through my social media handles. जहाँ से भी आप कर रहे कर लो और आगे भी करते रहिएगा. It's called Prem Joshi Podcast, PREMJOSHI Podcast. Next गाना रागेश्वरी का दुनिया.

भाई आप लोग ने अगर अभी तक सोनू निगम का कोई लाइव कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है तो प्लीज कीजिए यार। ये गाने पे अगर आपको मजा आ रहा है, इट्स गोना बी 10 times 100 times मोर एंटरटेनिंग। आई विल टेल यू, 15 years अगो, ऑफ कोर्स वी वर इन BKC, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स। आई यूज टू वर्क देयर फॉर एन MNC, एंड हमको पता चला MMRDA ग्राउंड्स में एक कॉन्सर्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो वी आर वर्किंग ऑन अ फ्राइडे 2 PM 3 PM एंड वी कम टू नो दैट देयर इज सम कॉन्सर्ट हैपनिंग। वी आर लाइक, व्हाट आर वी डूइंग, लेट्स गो एंड चेक इट आउट हु इज प्लेइंग एंड हु इज परफॉर्मिंग, बिकॉज एवरी वीकेंड MMRDA ग्राउंड्स में समबडी यूज टू परफॉर्म, राइट? सो इट वॉज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस एंड वी वेंट देयर

different calls, two different requests, and they both recommended me the same song at the same time. Yes, so Setu called me और बोला कि प्रेम भाई गोरी तेरी आंखें बजा दो. Then Sharmeen recommended me the same song गोरी तेरी आंखें in the same minute. So people are loving the show, people are loving the songs, people are going in their nostalgic memories. So whatever is happening right now in the show, people are liking it and I'm loving it. So thank you so much everybody, to all those amazing callers, to all the amazing people who are messaging me, DMing me on Instagram and Facebook. Thank you so much. You are making our day, our job very, very easy. Next gana, Gori Teri Aankhe Kahe. It's an amazing song. मैं दो आर्टिस्ट, ये जो दो आर्टिस्ट है बहुत आइकॉनिक है, मैं उनके नाम नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा मजा कर लेते हैं, जाते जाते किसी को कुछ दे देते हैं, ऐसा करते हैं. ओके, तो मुझे आपको एक कंपनी के बारे में बोलना है. दैट इज अ डक टाइम एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट एनिवर्सरी इन डैलस, एंड बिकॉज ऑफ देयर एनिवर्सरी दे हैव टोल्ड अस दैट दे वॉन्ट टू गिव वन ऑफ आर लिसनर ए फ्री सर्विस ऑफ ड्राइव एंड क्लीनिंग. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर ड्राई वेंट. सो यू आर गोना बी विनिंग अ फ्री ड्राई वेंट क्लीनिंग सर्विस फ्रॉम डक टाइम. ऑल यू गॉटा डू इज यू गॉटा गिव मी अ कॉल एंड टेल मी द नेम ऑफ द आर्टिस्ट. ये सिंगर्स के नाम बताने में ये जो गाना बजाने वाला हो, ठीक है? 972-235-5555. ओके, गोरी तेरी आंखें कहें. 972-235-5555. ये दोनों सिंगर के नाम फटाफट बता दो मेरे को. वुप्सी, यर वी गो.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. यस द राइट आंसर इज लकी अली एंड कविता कृष्णमूर्ति. शर्मीन ने हमको फटाफट से 10 सेकंड में जवाब दे दिया. डक टाइम गिव अवे ऑफ कोर्स एक ही था, बट लेडीज एंड जेंटलमैन हताश मत होइए, नाराज मत होइए, बिकॉज वी डू दिस एवरी सिंगल वीकेंड. वी प्ले बॉलीवुड क्विजेस एवरी सिंगल वीकेंड बिकॉज ऑफ आवर अमेजिंग स्पॉन्सर्स. कॉल जीतू पटेल एट 972-877-2500 एंड बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे for a cleaner, safer and a fresher home. Duck Time, who is celebrating its first time anniversary in Dallas, you really need to make sure you are getting a professional duck cleaning that helps remove dust, clear clog vents, improve airflow and reduce the hidden fire hazards. Trust Duck Time. All right? Ladies and gentlemen, last song of the show. Thank you so much. It was fun. Make sure you follow us on Instagram, Facebook and YouTube. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. Send us a DM, send us your questions, follow us. We post some amazing content out there.

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive Media Partner, Panacea।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
3: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: अब तू आ गई है।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up।
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

कुछ बदल गया है, नहीं तो आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
4: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
5: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: माय गॉड।
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
2: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था?
8: सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओह हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभाल लेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
10: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
14: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
17: How may I help you?
18: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
17: Fear not, we have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
13: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

संडे गपशप पे तमाम श्रोताओं का स्वागत है, हार्दिक स्वागत आप सबका। वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फनीजिया रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आपका स्वागत करती हूं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्टूडियो में हूँ। संडे मॉर्निंग है आज। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। 104.9 एफएम फनीजिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर आपने मेरे साथ बात करनी है या फिर अपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट करनी है, जो भी आपका सॉन्ग ऑफ चॉइस है आज के लिए, वो आप मुझे बताने के लिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 972-235-5555। 10 बजे तक मैं यहाँ पर स्टूडियो में शो पेश कर रही हूँ संडे गपशप। संडे के संडे मुलाकात होती है आपसे और 3 घंटे का ये सफ़र बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन हो जाता है। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार भी सुंदर ही लगता है।

60s का एक और ये ज़बरदस्त जेम, 1967 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम आमने सामने, और शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी जैसे सभी जाने माने कलाकार, एक्टर्स, एंड कल्याण जी, आनंद जी का म्यूज़िक, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़बरदस्त अच्छी अच्छी मेलोडियस आवाज़ें। चलिए अभी बढ़ते हैं, एक और बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, 1969 की फिल्म का सॉन्ग है, आप सुनोगे तो डेफिनेटली बहुत एंजॉय करोगे।

0: ये जो कवि बनने की बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं धर्मेंद्र जी के लिए, एंड द सॉन्ग इज़ ऑल्सो पिक्चराइज्ड ऑन वैजयंती माला जी. सो द फिल्म नेम इज़ प्यार ही प्यार 1969, की अगेन एक और बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िकली सुपरहिट फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक एंड बप्पी सोनी का जो है ये इसमें मूवी में डायरेक्शन रही. बप्पी सोनी ये वही हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी भी बनाई थी एंड उसमें शमी कपूर थे एंड दैट फिल्म बिकेम सो पॉपुलर. सो ही इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर और इनको जो है कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं. फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म. जानवर फिल्म आई थी 1965 में, वो भी इन्होंने ही बनाई थी. सो कुछ हैं, दो एटलीस्ट दो फिल्में हैं जो इन्होंने बनाई हैं और जिसके लिए ये पॉपुलर हैं. टाइम हो रहा है अभी एक छोटे से ब्रेक का, तो ऑब्वियसली अभी मैं कुछ नया सॉन्ग तो नहीं प्ले करूँगी, लेकिन आपको बस रिमाइंड करा दूँ 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. आप अपनी कॉल कर सकते हैं मुझे यहाँ पर. मैं आरजे एक रूप स्टूडियो में 10 बजे तक शो पेश कर रही हूँ, संडे गपशप. आई विल बी हियर अंटिल 10 o'clock. टुडे इज़ सितंबर 20th, यानी कि थर्ड संडे है. इसके बाद एक और संडे होगा विच विल बी द 27th, एंड देन अगेन लाइक आई ऑलवेज से दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मंथ, एंड दैट इज़ हाउ द कैलेंडर गोज ऑन. 9th मंथ चल रहा है, आज 20th डे है. ब्रेक का टाइम हो रहा है, आई विल बी राइट बैक.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
10: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: We need to talk.
13: अब क्या हुआ?
12: Nothing. It's not you.
13: Oh no.
12: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
12: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
19: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
12: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
19: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
20: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
21: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
20: Barista House, richness of biryani bliss.
22: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप, आपका स्वागत करती हूं. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. कॉल करके मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. संडे गपशप आता है, संडे सुबह यानी कि 3 घंटे का ये शो होता है और आपसे बातें होती हैं. आपकी चॉइस के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मैं यहाँ पर प्ले करती हूँ. अभी जो है ब्रेक, 7:30 की ब्रेक के बाद हम 5 मिनट की कमर्शियल ब्रेक्स होती हैं, तो अभी 7:35 हो रहे हैं स्टूडियो के क्लॉक में. और ये शो जो है सुधीर पाय लेकर आते हैं आपके लिए, लेड बाय सुधीर पाय. ही इज़ द CPA एंड ही ओन्स द कंपनी कॉल्ड माई टाइम एक्विटी. Offers personalized strategies for portfolio management, real estate, alternative investments and retirement planning. तो अगर आपने उनके साथ contact बनाना है तो फिर सुधीर पाय जो CPA हैं, My Time Equity उनका business है, उनके साथ आप contact बनाएं 4697021272 या फिर आप उनकी website को visit कर लीजिए mytimeequity.com. तो मिस्टर सुधीर पाय जो CPA हैं, हमारी community को service प्रोवाइड करते हैं अपनी एंड माई टाइम एक्विटी विच विल टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, विच विल मैनेज योर पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो दे विल हेल्प यू गाइड थ्रू योर रिटायरमेंट प्लानिंग. 4697021272 या फिर विजिट करिए उनकी वेबसाइट mytimeequity.com.

इतना मेलोडियस सूदिंग सॉन्ग, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस, और ये तो एक्चुअली पेरिस में ही इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। शैलेंद्र जी के लिरिक्स थे इस सॉन्ग के लिए, एंड वेल इस या मूवी के लिए हसरा जयपुरी ने भी लिखे थे, एंड म्यूजिक रहा शंकर जयकिशन का। मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी की आवाज़ें, आशा जी जिनका जन्मदिन सितंबर में ही आता है, एंड जस्ट अर्लियर दिस ईयर शी पास्ड अवे, और अपनी जो है बड़ी सिस्टर लता जी के पास चली गई हैं इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आशा जी जिनकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी सुरीली, एंड उन्होंने इस सॉन्ग को गाया एंड डेफिनेटली चार चांद लग गए। फिल्म में शमी कपूर भी थे, हाउएवर द मेन शेयर ऑफ स्टारडम एंड पॉपुलैरिटी वेंट टू शर्मिला टैगोर। फिल्म सुपरहिट हुई थी एंड उस टाइम की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स। शर्मिला टैगोर ने आराधना जैसी फिल्मों में भी काम किया, और जिसको शक्ति सामंता ने डायरेक्ट किया था, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फिल्म्स दैट वाज डायरेक्टेड बाय शक्ति सामंता। तो जो है शक्ति सामंता एंड शर्मिला जी की कलाबरेशन कई फिल्मों में हमने देखी, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट सारी ही वो फिल्में जो हैं बहुत पॉपुलर हुई थी। एन इवनिंग इन पेरिस, जिसका हम ये सॉन्ग सुन रहे थे। 972-235-5555, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लिसन टू दिस अनदर वेरी पॉपुलर सॉन्ग, अ ड्रीम गर्ल।

इतना एक्सप्रेसिव फेस आशा पारेख जी का, एंड शी इज़ मेंट टू बी ऑन स्टेज, ऑन स्क्रीन. इनकी जो कला है, इनकी जो अदाएं हैं, इनकी एक्टिंग और बोलने का स्टाइल, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री. एंड इन्होंने काम जो किया है आशा पारेख ने, बहुत ही खूबसूरत काम. इनकी फिल्में ज़बरदस्त, इनके एक्टिंग ज़बरदस्त, और इनके जो हैं सॉन्ग्स भी मूवीज़ के बहुत ही अच्छे हुआ करते थे. मदन मोहन साहब का म्यूज़िक, फिल्म का नाम चिराग, और उसी फिल्म का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, भोर होते कागा. थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे श्रोताओं का, आप सब इतनी अच्छी अच्छी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एंड द मॉर्निंग एंड द होल डे ऑफ संडे बिकम्स डेफिनेटली वेरी ब्यूटिफुल. एक और ज़बरदस्त सॉन्ग है, फिल्म का नाम पारस मनी, और इस फिल्म के सारे ही सॉन्ग्स एज द लिसनर सेज के बहुत ही ब्यूटिफुल हैं. दिस वन इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और फिल्म का नाम, लाइक आई सेड, पारस मनी, 1963.

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही प्यारा अच्छा मेलोडियस म्यूजिक। और अब हम बढ़ते हैं मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन की तरफ, मेरा साया।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas, PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
14: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
15: Matlab crispy golden dosa?
14: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
15: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
13: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
16: Ye tara wo tara har tara.
17: Arre arre arre, Dallas ke aasman mein itne sare tara nahi. Business owners ke liye to sirf ek hi tara kafi hai. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
18: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
19: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
20: वही आवाज
8: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
20: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
21: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
20: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे इकरूप, आपका स्वागत करती हूं. 8 o'clock हो चुके हैं, वो स्टूडियो की घड़ी में तो अभी 8:06 हो रहे हैं. 8 o'clock ब्रेक आती है, अब हम ब्रेक के बाद रिज्यूम कर रहे हैं. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, प्लीज कीप द कॉल्स कमिंग इन. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे का ये शो होता है. लेकर आती हूँ इसको मैं, यानी कि एक रूप. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. दिस शो इज आल्सो ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा. इनके जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं पर्सनल इंजरी एंड अगर कोई एक्सीडेंट इंजरी या एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल और आपको ज़रूरत है एक अच्छे अटॉर्नी की, तो फिर आप ओमर ख्वाजा को ज़रूर याद करें. दे फोकस ऑन हीलिंग वाइल वो यू कैन फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटॉर्नी ओमर फाइट्स फॉर यू. और आप उनको कुछ पे नहीं करते जब तक वो आपके लिए अपना आपका केस जीत नहीं जाते. सो ओमर ख्वाजा वंडरफुल अटॉर्नी इन द कम्युनिटी, हिज नेम द प्रैक्टिस इज लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. AttorneyOmar.com is the website. 469-300-5046 is his phone number. So get in touch whenever you need. God forbid that this situation comes up in you or in the life of people that you know. But if it does, then you know that you have somebody that will surely support you and provide you their genuine support. The law offices of ओमर ख्वाजा, phone number 469-300-5046, or you can visit his website, which is attorneyomar.com. वेलकम करती हूँ आप सबका, स्वागत है. और बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं आपकी चॉइस के जो मैंने यहाँ पर लाइनअप किए हुए हैं. सो लेट्स रिज्यूम आवर शो विद दिस वन.

शुक्रिया आप सबके फोन कॉल्स का. सुबह सुबह आपकी ब्लेसिंग्स. सुबह वेल ब्लेसिंग्स ऐसे नहीं मैं कह रही कि आप सब कोई बहुत ही सेंटली वैसा कुछ मैं साउंड नहीं करना चाहती. स्पिरिचुअलिटी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रही, बट हाँ आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी बेस्ट विशेस और आप के इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं जो आपकी चॉइस के. हसन साहब कहते हैं धीरे चलना बाबू, उन्होंने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया. मैंने कहा ये वाला कौन सा गाना है धीरे चलना बाबू. सो एक्चुअली वो है ये वाला सॉन्ग. सो हसन साहब ये आपके लिए. गाना चल रहा है. आई नीड टू पॉज द वन दैट इज प्लेइंग ऑन इन द बैक. सो ये वाला धीरे चलना बाबू, ये वाला सुनिए हसन साहब, आपकी चॉइस का गाना. ओ माय गुडनेस, ये लीजिए आपकी चॉइस का सॉन्ग.

अच्छा, हमारे एक लिसनर हैं जो दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट वो ये भी करते हैं कि दोनों सॉन्ग्स जो हैं बैक टू बैक प्ले कर दूं मैं. सो अब मैं जो दो अगले सॉन्ग्स लगाऊंगी वो हमारे सेम लिसनर की चॉइस के हैं एंड बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स हैं. सो हियर यू गो.

1952 में ये जो है टीम वर्क पार्टनरशिप शुरू हुई थी आशा भोसले जी की एंड ओपी नैयर साहब की, और ये चली अबाउट मिड 70s तक, और ये ऑलमोस्ट जो है 20 इयर्स का टीम वर्क, इनकी कलेबोरेशन, इतना अच्छे उन्होंने जो है इतने सुंदर गीत दिए. ओपी नैयर साहब उनको कंपोज करते रहे और आशा भोसले जी उनको बहुत ही सुंदर तरीके से गाती रहीं. एंड उनका ओपी नैयर साहब का बस एक ही जो है मेन यही उनकी प्रेफरेंस थी कि आशा जी को किसी और की तरह साउंड ना करवाएं. उनकी जो अपनी आवाज़ है, जो वो लंबा सांस लेकर जो वो गाती हैं, और जो जिस तरह से उनके जो नेचुरल कला है वो उसी पर फोकस करें, ताकि जो है उस टाइम पर उनकी बड़ी सिस्टर लता जी का फीवर तो खैर मोनोपोली चल ही रही थी उस टाइम पर, एंड आशा जी थोड़ा सा ओवर शैडोड फील कर रही थी. सो टू हेल्प हर ओवरकम दिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट वॉज बॉदरिंग हर, उनका जो है कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, तो ओपी नैयर साहब ने एज इज़ जो आशा जी के पास टैलेंट था उनको एज इज़ एम्ब्रेस किया, और वही उन्होंने जो है उसी पर वो बहुत ही थ्राइव उन्होंने किया इंडस्ट्री में. सो दिस वाज आशा जी एंड ओपी नैयर साहब. फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी. शर्मिला जी ये गाना गा रही हैं, वो उन पर फिल्माया गया है. चलिए अब हमारी एक और लिसनर हैं जो कहती हैं ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए. सो हियर यू गो. फिल्म का नाम यहूदी.

स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। शुक्रिया, धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स का, आपके साथ का एंड आपके इतने सुंदर गीतों की चॉइस का, जो कि मैं यहाँ पर आपके पसंदीदा सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ। शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग माय संडे सो ब्यूटीफुल, एंड आई होप कि इस शो के ज़रिए आपका संडे भी खूबसूरत बन जाता होगा। आज की डेट 9/20 यानी कि सितंबर 20 है आज की डेट, और आज जो है थर्ड संडे है इस महीने का। एक और संडे होगा अगले वाला 27 तारीख को, और फिर उसके बाद हम लोग अक्टूबर में आ जाएंगे। वर्ल्ड टुडे वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर। फटाफट से टाइम निकल रहा है, टाइम मौसम में तब्दीली देख रहे हैं। लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, वो झड़ने शुरू हो गए हैं, ब्राउन होने शुरू हो गए हैं एक्चुअली, और थोड़ा थोड़ा जो है झड़ने भी शुरू हो गए हैं। सो अब जो है मौसम में तब्दीली आ जाएगी, फॉल का सीज़न शुरू हो चुका है या हो जाएगा वेरी सून, एंड देन एज द सीज़न गोज़ ऑन, एज टाइम चेंजेस, we also have to accommodate and mold ourselves according to the need of this season. So, ab jo hai garmiyon ke kapde andar and sardiyon ke kapde bahar. 3 घंटे का ये शो होता है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक। मिडवे हम पहुंच गए हैं, 8:36 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, और आपकी चॉइस के इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मैंने यहाँ पर लाइनअप कर दिए हैं। थोड़ा सा देर हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके सॉन्ग्स नहीं प्ले करती या भूल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप कॉल करते हैं मैं उनको टाइप करके लाइनअप कर देती हूँ, सो इवेंचुअली आपके सॉन्ग का नंबर ज़रूर आता है। हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने बताया कि वो कंप्यूटर पर इतना उन्होंने काम कर लिया कि अब उनकी गर्दन में जो है पेन हो रहा है, और उनकी वाइफ उनको ये वाला सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं, एंड ये वाला सॉन्ग है फिल्म 3 420 का। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, जब गर्दन में पेन होता है तो हम क्या कह देते हैं कभी कभी कि मुड़ मुड़ के ना देख।

जब आप एक बार page 3 E3 पे खाना खा लेंगे ना, तो फिर आप बार बार मुड़ मुड़ के देखेंगे भी page 3 E3 को, और वहाँ पर जाएंगे भी. page 3 E3, विच इज़ लोकेटेड इन मिकिनी, वेरी क्लोज टू द स्टूडियो, दे हैव सिज़लिंग कबाब्स, फ्लेवरफुल चाट, 2 फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स. बहुत ही अच्छा खाना है उनका, और उनकी जो प्रेजेंटेशन है बड़ी कमाल की है. इट इज़ अ ट्रीट टू द आईज एंड डेफिनेटली अ ट्रीट टू योर टमी. इफ़ यू स्टिल हैवेंट एक्सपीरियंस्ड page 3 एट Hub 121, आप सीरियसली कुछ मिस आउट कर रहे हैं. और यहाँ पर जो है स्ट्रीट फूड जब एक अच्छी सुंदर प्रेजेंटेशन को मीट करता है, तो फिर बनता है page 3 E3. चाहे ब्रंच हो या लंच हो, डिनर, डेट नाइट, या आप वैसे ही बस अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहते हो, page 3 विल ब्रिंग परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. page 3 E3, they are located at Hub 121 in McKinney, very close to the studio. आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए page3eatery.com, eatery as in EATERY. और September 4th onwards जो है आपको जन्माष्टमी के लिए, जब आप वहाँ खाना खाने जाएंगे, तो क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर आपको श्रीखंड जो है आपके हर गेस्ट को मिलेगी. सो यू कैन इंक्वायर मोर अबाउट दिस. डेफिनेटली सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बट डेफिनेटली डू इंक्वायर विद देम. page 3 eatery located at Hub 121 in McKinney. Unki website hai page 3 as in just the digit 3, don't spell it out, page3eatery.com. to definitely wahan par aap mud mud ke dekhenge bhi aur mud mud ke wapas jana bhi chahenge. So beautiful song. I hope जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की उनकी नेक में पेन हो रहा है, तो आई होप कि आपकी पेन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए. आई नो इट कैन बी अ लिटल फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज नेक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. इन फैक्ट द होल बॉडी बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट. जब तक तो सब ठीक चलता है, अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी छोटा सा भी कहीं पे पेन जब शुरू हो जाए, तो लगता है कि ओ माय गुडनेस, ये क्या हो गया. सो अ नेक पेन इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, दैट कैन डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन योर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ. सो हमारे लिसनर, हम सब की गुड विशेस आपके साथ, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आपकी नेक जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए. अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इस सॉन्ग की तरफ. हमारी श्रोता कह रही हैं कि आप भूल तो नहीं गए. बिल्कुल भी नहीं. ये लीजिए.

ये जो शो है संडे गपशप, आपके लिए लेकर आती हूँ मैं आरजे एक रूप। और 7 बजे से 10 बजे तक ये शो आता है। और इस शो को स्पॉन्सर, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इज एजी फिनटेक्स। ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर देंगे, इक्विप कर देंगे विद द राइट स्ट्रैटेजीज एंड नीड्स दैट यू नीड टू थ्राइव एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और अ बिजनेस पर्सन। यू कैन कॉल एजी फिनटेक्स एट 469-942-9888 और यू कैन विजिट हिज वेबसाइट एट agfintechs.com है उनकी वेबसाइट।

मिड 80s 1985 में फिल्म आई थी सितमगर, और ये उसी का ही सॉन्ग किशोरदा की आवाज में। हमारे लिसनर जिनको किशोरदा की आवाज बहुत पसंद है, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी। चलिए अब हमारी लिसनर जो ये वाला सॉन्ग सुनना चाहती हैं, फिल्म का नाम वो कौन थी।

1964, सो 60s का ही ये एक और इतना अच्छा नगमा जो हम सुन रहे थे, अ ट्रू जेम इन इट्स सेंस. और ये मनोज कुमार इसमें नज़र आ रहे हैं. साधना जी थी इस फिल्म में, के एन सिंह, हेलन और आशा भोसले जी की आवाज़ ये वाली, जिस की जो है प्रेज जितनी करें उतनी ही कम है. मदन मोहन का म्यूजिक था और ये वाला सॉन्ग शोक नज़र की बिजलियां, सिर्फ एक ये वाला ही सॉन्ग है जो आशा जी ने गाया था. बाकी सारे सॉन्ग्स इस फिल्म के, वल दो गाए थे आशा जी ने और बाकी सारे सॉन्ग्स लता जी की आवाज़ में थे. 1964 में ये थ्रिलर फिल्म आई थी. साधना जी बहुत ही अमेजिंग लगी थी एंड मनोज कुमार दैट प्लेड द रोल ऑफ अ डॉक्टर इन दिस फिल्म कॉल्ड वो कौन थी. ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, अबाउट अ मिनट लेफ्ट. और दूसरा सॉन्ग बोल, जो अगला सॉन्ग जो होगा आपकी चॉइस का, वो मैं 9 o'clock की ब्रेक के बाद ही प्ले करूँगी. 9 बजने वाले हैं अबाउट 30-40 seconds में. और अब ब्रेक के बाद मेरे पास एक गिव अवे है फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से. लेट मी जस्ट डबल चेक एंड फिर उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन हम आप फिर मुझे बताइए कि क्या सही जवाब है. सो ऑल दिस विल टेक प्लेस आफ्टर द 9 AM ब्रेक. फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से एक $10 गिफ्ट कार्ड जीतने का चांस मिलेगा आपको इस गिव अवे के थ्रू. सो 9:15 जैसे कि यूजली हर संडे को मैं ऐसे ही करती हूँ, 9 बजे की ब्रेक के बाद ही गिव अवे होता है. और कुछ हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके मैसेजेस हैं, जिनकी अनाउंसमेंट्स हैं, वो भी मैंने करनी है. और रिमाइंड करवाना है कि अगले सैटरडे

0: 26 तारीख को सोनू निगम यहाँ पर आ रहे हैं।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
8: How may I help you?
9: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
8: Fear not, we have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
13: We need to talk.
14: अब क्या हुआ?
13: Nothing. It's not you.
14: Oh no.
13: It's the distance.
14: Distance? We live 10 minutes apart.
13: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
5: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं ही तो।
22: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you're listening Radio Fun Asia.
11: 4-7th

0: Peter Andre came out with his second album called Natural, and this song, Mysterious Girl, was part of that second album called Natural that came out in 1996. स्वागत करती हूँ आप सबका. थैंक यू सो मच. आप सुन रहे हैं इस शो को जिसका नाम संडे गपशप. 9 o'clock की ब्रेक के बाद अभी हम रिटर्न रिज्यूम कर रहे हैं. 9:08 हो रहे हैं स्टूडियो की क्लॉक में. एंड लाइक आई हैड मेंशन्ड बिफोर, ब्रेक पे जाने से पहले रिमाइंड करवाया था आपको कि 9 की ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो एक सॉन्ग होगा एंड देन फिर हम करेंगे गिव अवे के बारे में बात. एंड आई ऑल्सो हैव द फोन लाइन्स ओपन, so you can give me a call, let me know the right answer so that you can win this free giveaway, which is in the amount of $10. It's a gift card from Fun Pizza Kitchen, and ye ek winner ko dungi main aaj. Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican inspired pizza lineup, and these aren't just pizzas, they are full in flavor, and flavor that reminds you of a fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, the seafood packed señor Camaron. Every bite is bold, exciting and made to impress. तो अगर आप Mexican flavor आपको अच्छा लगता है तो आप इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करें. गुरु फन पिज़्ज़ा किचन एंड दिस टेस्ट विल डेफिनेटली is going to attract you. New flavors, new obsession. For more details, you can visit this website, which is funpizzakitchen.com. So here is a chance for you to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. I'm going to play a clip and isme aapko teen awaazein sunai dengi. Ek awaaz to aap definitely right away pehchan jayenge. जो दो आवाज़ें हैं वो आपको थोड़ा पेशेंटली सुनना पड़ेगा क्योंकि उनके डायलॉग्स थोड़े से कम हैं. सो देर आर थ्री मेल वॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू हियर इन दिस क्लिप दैट आई एम गोइंग टू प्ले राइट नाउ. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्री एक्टर्स दैट आर इन दिस क्लिप और उस फिल्म का नाम भी आपको मुझे बताना है. सो आई एम गोइंग प्ले द क्लिप राइट नाउ. जस्ट हैंग इन देयर, पेशेंटली इसको पूरा सुनिए. ये नहीं कि आपने फर्स्ट आवाज़ सुन ली एंड यू आर कॉलिंग मी. यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम, बट द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्री मेल वॉइसेस. आप उन एक्टर्स के नाम बता दीजिए एंड टेल मी द मूवी दैट दिस सीन इज फ्रॉम. सो हियर यू गो, लेट मी जस्ट रिमाइंड द फोन नंबर विच इज 972-235-5555 एंड दिस इज फॉर अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन एंड दिस इज द क्लिप. हियर यू गो, थ्री मेल वॉइसेस, थ्री एक्टर्स दैट आर इन दिस क्लिप एंड द नेम ऑफ द मूवी.
1: कौन है आप? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था और मैं राहु काल में विश्वास रखता हूँ तो थोड़ा जल्दी में हूँ. पहले हम लोग मिल चुके हैं. कौन है ये बुजुर्ग?
2: अच्छा, तू चाहता है मैं तुझे इनका नाम बताऊँ?
1: नाम पूछ रहा हूँ. आप दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है, कड़क है.
2: अच्छा, बाप और भाई को भूल गया?
1: अच्छा, तो ये आपके पिताजी और आप उनके बेटे हैं. सही बात है. आप लोग यहाँ के क्यों धूम मचा रहे हैं?
3: फोन गुच्चे, आई यादाश्त वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं, शायद एक और चांटा गाल पर पड़ते ही याद आ जाए कि तू किशन है.
1: मैं किशन नहीं हूँ.
3: तू किशन नहीं है?
1: मैं किशन नहीं हूँ.
3: तू किशन नहीं है?
1: नहीं हूँ.
3: नहीं है?
1: मैं नहीं बोला ना, किशन नहीं हूँ बोला. कितनी बार चांटा?
3: अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक मार. अगर तू किशन नहीं है तो धर दे मेरे मुंह पर एक मार.
0: गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
4: या दैट इज परेश रावल, अमरीश पुरी एंड सुनील शेट्टी.
0: यू आर वेरी क्लोज बट स्टिल नॉट देयर. थैंक यू सो मच.
5: बाप और भाई को भूल गया.
0: अरे पहले अपने वॉल्यूम जो है रेडियो की कम कर दीजिए. यू आर लाइव ऑन एयर, सो टेल मी द नेम्स. I can't hear you. आप एक बार फिर से बताइए. Your voice is not so clear.
6: Yes, my name is Vishal.
0: Okay, hi Krishnan. हाँ जी बताइए.
6: तो एक्चुअली मूवी का नाम है एक्चुअली हंगामा.
0: ओके
6: एंड जो हीरो है तो दैट इज तो पहला नाम था दैट वॉज परेश रावल.
0: हाँ जी.
6: एंड उसके बाद जो सेकंड नाम था दैट वॉज अरबाज खान.
0: हाँ.
6: एंड आई थिंक जो तीसरा है दैट इज अक्षय खन्ना.
0: आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ठीक है लेकिन थोड़ी सी जंबल्ड अप है. यू आर गेटिंग देयर बट यू आर स्टिल नॉट देयर. सो थैंक यू सो मच. या गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
7: हाय, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग, टेल अस योर नेम एंड आर यू कॉलिंग फॉर द गिव अवे?
7: यस.
0: ओके, लेट्स
7: हियर. माय नेम इज चेन शेर.
0: ओह बॉय, आई डोंट थिंक आई गेट इट. सॉरी, यू हैव टू टेल मी वन मोर टाइम.
7: It's Chain, Chainshir.
0: Oh,
7: Chainshir.
0: Chainshir. Okay. Yes. All right. Thank you. That's pretty. All right. So tell us the names of the three male voices that you hear.
7: Paresh Rawal.
0: Hanji.
7: Arbaaz Khan. And Amrish Puri.
0: And the movie?
7: Halchal.
0: Oh, my goodness. You just... Hit it right on the head. Bilkul aapne theek diya iska answer. Yes. So the combination is, tell us again.
7: Sorry, say that again?
0: I said, tell us the combination one more time. I just want you to repeat your answer.
7: It's Paresh Rawal, Arbaaz Khan and Amrish Puri from the movie Halchal.
0: Halchal, yes. So have you watched this movie?
7: Oh yeah, several times.
0: Bahut hi amazing. Our director called it. That's not part of the giveaway, but who is the director?
7: I think it's Priyadarshan.
0: Priyadarshan, very typical. Sabne white kapde pehne hote hain, aur ye sari actors, unhi ke hi favorite. Ye pura jo bunch hai, it's like a cohort. They all appear in the same movie with him.
7: I know exactly. The only thing missing over here was Akshay Kumar.
0: अक्षय कुमार. हाँ, अगर वो नहीं होते तो ऑब्वियसली इसमें अक्षय खन्ना. हाँ, अक्षय तो उन्होंने लेने ही है. चाहे खन्ना हो या कुमार हो. सो यस, आई लव हिज फिल्म्स. ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ देम आर सुपर हिट, बट फॉर द मोस्ट पार्ट उनकी फिल्में अच्छी होती हैं एंड दे आर फनी.
7: आई वॉच मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बट या नॉट ऑल.
0: हाँ या इनकी एक आपने वो देखी है, दे दना दन?
7: देखी है मैंने, बट एक ही बार देखी थी. नॉट लाइक अ रिपीट वन वेयर यू नो अ फ्यू ऑफ द प्रियदर्शन मूवीज यू वॉच ऑन रिपीट लाइक यू. बट या वो एक बार देखी है मैंने.
0: और इनकी एक वो माला माल वीकली भी बहुत ही क्लासिक.
7: हाँ,
0: अच्छी
7: वो भी
0: है.
7: बहुत याद आ रहा है, सो फनी.
0: सबको ही पता चल जाता है लॉटरी के बारे में. एंड या
7: ट्रू ट्रू
0: या ओके. ऑलराइट, सो योर नेम इज चेन शिर.
7: Yeah.
0: Okay.
7: Chain that we wear, so Chain and Shir.
0: Okay.
7: Chain shir.
0: So iska koi meaning hai is word ka?
7: Yes, it's my dad made it up.
0: Huh.
7: So it's not a name, but he made it up.
0: Oh.
7: It's like chain that is linked with Shirdi. You know, are you aware of Shirdi?
0: Oh yeah, Sai Baba.
7: Yes. Yes.
0: Oh, how beautiful.
7: He believes in Sai Baba a lot. So it's like a chain that is linked with Shirdi.
0: How awesome. That's so pretty. Thank you so much. You are the winner. Baki aur baatein ab hum offer karenge. Let me just play a song from this film, Halchal. And jo hai, main aapke details leti hun so that you can know how to claim your prize. Okay? Your giveaway. All right. So just stay here. I'm going to speak to you off air. All right, so ये हमारी विनर चेन शिर एंड फिल्म का नाम उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया विच वॉज हलचल. और ये कॉम्बिनेशन तीन एक्टर्स का, पारिश रावल, अमरीश पुरी एंड अरबाज खान. सो बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये. इस फिल्म का ये वाला सॉन्ग आप इन्जॉय कीजिए. आई थिंक चलेगा अभी. देयर यू गो.

अगर पुराने डायरेक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर वाज इन द गोल्डन एरा, गोल्डन एज जो है सिनेमा बॉलीवुड की, सारे ही डायरेक्टर्स बहुत ही कमाल के. लेकिन अगर एक को किसी को पिक करना हो तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज मेरे मन में है ऋषिकेश मुखर्जी के लिए इन द ओल्डन टाइम्स, इन द गोल्डन एरा टाइम्स, गोल्डन एज जो था. और अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मेरे मन में प्रिया दर्शन की फिल्मों का है, बट नॉट द रीसेंट वंस, नॉट इन द लास्ट 5-7 ईयर्स, उससे जो पहले आई हैं, जब ये हलचल बनी थी, माला माल वीकली बनी थी और इतनी सारी दे दनादन टाइप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी थी, हंगामा वॉज अ गुड वन. सो ये जो एरा है, ये जो टाइम है, ये जो सॉन्ग्स, म्यूजिक, स्टोरी का बहुत ही कैची एंड पूरा टाइम आप बस अपनी जो कुर्सी पे बैठ के जब आप फिल्म देखते हो, वो सोफे पे, कुर्सी पे, वेर एवर यू नो, इफ़ यू आर इन द मूवी हॉल देन ऑफ कोर्स यू आर ऑन द सीट्स. तो ये जो है दे जस्ट आर सो मैग्नेटिक दैट दे You don't want to get up and leave and go anywhere. So इतनी अच्छी इनकी स्टोरी, इतनी अच्छा म्यूज़िक और एक्टर्स तो बहुत ही कमाल के, एक से बढ़कर एक. सो दिस सॉन्ग एंड दिस गिवअवे वॉज रिवॉल्विंग अराउंड अ मूवी बाय प्रिया दर्शन और मूवी का नाम ऑफकोर्स हेरा फेरी. हम कैसे भूल सकते हैं द ओरिजिनल हेरा फेरी जो इन्होंने पहली जो बनाई थी. सो हलचल फिल्म का ये वाला जो सीन हमने सुना, देखा तो नहीं, सुना, एंड देन ये सॉन्ग उसी फिल्म का. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल दैट कॉल्ड इन एंड चेन शिर, यू आर द विनर फॉर टुडेज गिव अवे बाय फन पिज्जा किचन. चलिए अब हमारे एक लिसनर है, वो ये वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं. फिल्म का नाम लव आजकल.

If you are looking for a smarter commercial energy solution, then you don't have to look so far. Tara Commercial Energy is right here. They are proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates. They are reliable. They provide a reliable service, and they also have customized energy plans. You do get in touch with Tara Energy, 844-428-2808. इतने सारे एट्स हैं इसमें, 844-428-2808. TaraEnergy.com is their website. तो आप जाके पूरे उनके जो प्लान्स हैं उनको देख लीजिए. विच एवर वन यू लाइक फॉर योर कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल बिजनेस, जो भी आपकी बिजनेस है जहाँ पर आपको ये चाहिए, तो आप ये इनको चूज कर सकते हैं. इनका प्लान, आई एम गोइंग टू रिपीट देयर नंबर, 844-428-2808. Tara Commercial Energy.

0: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: RCR straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
4: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
5: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
6: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
7: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम। इंट्रोड्यूसिंग फ्लेम आवर एट तंदूरी फ्लेम, जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है।

ये किशोर कुमार साहब की आवाज़ में हम ये सॉन्ग सुन रहे थे एंड अनअनाउंस जब गीत जो है अब्रप्टली ख़त्म हो जाता है ना, तो यू नो व्हाट द इश्यूज़ आर विद सोशल मीडिया आई गेस दीज डेज़। इतनी मैंने थोड़े दिन पहले नोटिस किया कि एक सॉन्ग प्ले हो रहा था एंड सॉन्ग तो ओरिजिनल था लेकिन उसका जो वीडियो था वो कोई एक वीडियो गेम चल रही है। सो आई डोंट नो हाउ दीज पीपल दैट व्हेन दे मेक और अपलोड सच सॉन्ग्स स्लैश वीडियोज़, तो वो शायद अपने व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसी चीज़ इन द बैकड्रॉप लगा देते हैं, बैकग्राउंड जिसको एक्चुअली लोग सुनेंगे विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द फ्रंट ऑन द वीडियो। सो वो कोई अपनी कोई वीडियो गेम एनिमेटेड प्ले कर देते हैं। सो आई जस्ट हैड टू बी अलो केयरफुल ऑफ दैट। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए बिकॉज एनी थिंग इज़ पॉसिबल दीज डेज विद ए आई। सो ये जो हम सॉन्ग सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अगला जो सॉन्ग है आई थिंक वो भी, जी हाँ डेफिनेटली वो भी किशोर कुमार की ही आवाज़ में है, इतना अच्छा सॉन्ग है। सो दिस वन फॉर आर अनदर लिसनर।

हमारी लिसनर पिंकी और उनके हस्बैंड बालू बालू जी कहते हैं अपनी वाइफ पिंकी के लिए ये वाला सॉन्ग, और वो सॉन्ग के थ्रू ही आप समझ जाएंगे कि बालू अपनी वाइफ पिंकी को क्या कहना चाहते हैं. सो हियर यू गो.

एक और सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, और वो वाला सॉन्ग भी किशोर कुमार साहब की ही आवाज़ का है. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि किशोर कुमार साहब का जन्म जो है 1929 को हुआ था, वो वी ऑल नो दैट, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि 100 ईयर्स होने वाले हैं. वी आर ऑलमोस्ट वो वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, और 2029 में किशोर कुमार के बर्थ को 100 ईयर्स हो जाएंगे. वाओ, आई जस्ट रियलाइज्ड इट, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हैरानी भी हुई. इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि आप कई बार सोचते नहीं हो, एंड दिस इज समथिंग दैट नॉर्मली यू डोंट थिंक अबाउट, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. August 4, 1929 को किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ था, एंड 1987 में उनकी डेथ हुई थी. ये वाला जो सॉन्ग है, फिल्म है मिस्टर इंडिया, ये वाला उन्हीं गाना जो है उन्हीं की आवाज़ में है, उन्हीं के आवाज़, मतलब किशोरदा की आवाज़ में ये वाला सॉन्ग.

अच्छे सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में, तो जो है इंडस्ट्री की लाइफ इतनी लंबी है, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा संगीत, इतनी मेलोडीज़ और सो मेनी रीजंस फॉर अस टू बी सिंगिंग एंड बी रिदमिक इन लाइव्स। अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे सिंगर की अगर हम बात करें तो हमारे जहन में एक नाम ज़रूर आता है और वो है सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम जिन्होंने हज़ारों गीत गाए हैं और इतनी सारी भाषाओं में गाए हैं। ही हैड टू स्ट्रगल फॉर अ लिटल व्हाइल, बट जब टैलेंट अच्छा हो, लक अच्छा हो और सस्टेनेबिलिटी हो इंडस्ट्री में, तो फिर आपका जो काम है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑलमोस्ट लेजेंडरी बन ही जाता है। सो सोनू निगम वन ऑफ द वेरी वर्सटाइल सिंगर्स इन द इंडस्ट्री, जिनको शायद कोलोकली हम मॉडर्न रफ़ी भी कह सकते हैं। वो हमारे टाउन, हमारी सिटी में, हमारे शहर में आ रहे हैं September 26th एट 8:30 PM, क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर विच इज़ इन एलन। आपके फेवरेट सॉन्ग्स वो गाएंगे, आप जिनको इतना आइकॉनिकली व्यू करते हैं, जिनकी पर्सनालिटी को सब पसंद हम करते हैं, सोनू निगम जिनकी आवाज़ को हम सब पसंद करते हैं, वो सब कुछ आपके सामने लाइव होगा। टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 855-360 शोज। तो यहाँ पर आप कॉल करके रेवोल्यूशन इनके

फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 855-360-SHOWS. तो यहाँ पर आप कॉल करके, रेवोल्यूशन इनके कॉन्सर्ट का नाम है, सोनू निगम इन लाइव एट 8:30 PM ऑन September 26th, क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर. एंड यस, द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज़ फन एशिया.

Well, hope you enjoy your concert on Saturday, September 26th, जो कि सोनू निगम आ रहे हैं लाइव. एंड अब जो है टाइम हो रहा है मेरे यहाँ से जाने का. मधुलिका विल बी हियर, अंशी विल बी हियर इन द स्टूडियो फ्रॉम 10 to 12. कीप द कॉल्स कमिंग इन, स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फैन एशिया रेडियो. दिस इज RJ एकरूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. हैव अ वंडरफुल डे एंड अ ग्रेट वीक अहेड. बाय बाय.

0: फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
0: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
8: दैट्स फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार. फेमिलियर इंडियन फ्लेवर्स विद अ फ्यूजन ट्विस्ट. ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन, नाउ द फ्लेवर स्टोरी मूव्स टू इरविंग. एंजॉय एन एवरीडे लंच बफे विद 25 आइटम्स, चाट, तंदूर, बिरयानी, फ्यूजन फेवरेट्स एंड प्लेंटी मोर टू डिस्कवर. फ्यूजन रिपब्लिक नाउ at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
12: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
13: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। पान एशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। तो संडे है तो चिल करना तो बनता है, राइट? दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड यस, कमिंग बैक टू जस्ट चिल। सो आज सुनेंगे कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने। सो अगर कोई गाना बहुत सुनने का मन है, देन डेफिनेटली रिमेंबर द नंबर 972-235-5555।

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में. एंड वेल, यहाँ रहना है तो अपनी तबीयत ज़रूर अच्छी रखें. एंड इसीलिए आपको मैं टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है उन्होंने हमारी कम्युनिटी को बहुत केयर दी है, बहुत सर्विसेज दी हैं अपनी. एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल. टेक्सास प्राइमरी केयर इन फ्रिस्को इज़ कमिंग, आई मीन इज़ देयर एज ल्यूनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है आपके लिए लाता है प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, फिर चाहे एक्सरेज हों, सिटी स्कैंस हों, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, इवन हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. सबसे अच्छी बात, दे आर ओपन 7 days a वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड.

0: हर तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
11: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
11: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
12: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
13: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
14: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

Well, that was taken from the movie Khalnayak. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggest, just chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखे याद, 972-235-5555. अब जैसे संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट, राइट? तो मैं आपको बताऊं कि जैसे पुरानी हिंदी मूवीज में ना, ये टोपियाँ दे या कुछ भी ऐसा एक कपड़ा, कोई आइटम जो है, वॉज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स बाय ऑक्यूपेशन, बाय क्लास या पर्सनालिटी. जैसे वो मेरा जूता है जापानी, राइट? सर पर लाल टोपी रूसी. सो यू नो, इट्स लाइक पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स प्लेफुल इमेजरी ऑफ क्लोदिंग एंड आइडेंटिटी. सिमिलरली तिरछी टोपी, यू नो, पहनना कैन बी यूज्ड फिगरेटिवली टू डिस्क्राइब समवन हु इज क्वर्की, अनकन्वेंशनल और अ लिटिल मिस्चीवियस. वाली गाना याद है ना?

that was taken from the movie त्रिदेव, और कितना फेमस हुआ था ये गाना, राइट? वेल, अगला गाना प्ले करूं, वो भी काफी फेमस हुआ था, रादर है। उसके पहले आपको मैं पीएमजे ज्वेल्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि अब फेस्टिविटीज आर ऑल यू नो हैव दे ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड हम जब सस्ते संवरते हैं तो हमेशा ये रहते हैं कि यार कुछ नया, कुछ हटके पहना जाए, राइट? तो पीएमजे ज्वेलर्स, जो कि अब फ्रिस्को में है, दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्यूटिफुल गोल्ड, बी ए डायमंड और ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन। सो डू विजिट पीएमजे ज्वेल्स, दे आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को। ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी, सो डोंट मिस दैट, दैट्स पीएमजे ज्वेल्स।

taken from the movie China Gate. That was a Chhamma Chhamma. And before I play the next song, मैं आपको ड्रीम होम मोगेज के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि होता है कि लोग अक्सर चाहते हैं कि भाई दशहरा पर आप अपना गृह प्रवेश कर लें या आप अपना नया घर खरीद लें. तो भाई जो ये ड्रीम होम है आपका कुड बी क्लोजर देन यू थिंक. वो इसलिए कि 1998 से ड्रीम होम मोगेज ने बहुत सी फैमिलीज को नेशन वाइड हेल्प किया है विथ पर्सनलाइज मोगेज सोल्यूशंस एंड फॉर बाइंग और फॉर रीफाइनेंसिंग, राइट. तो आप ड्रीम होम मोगेज को कॉल करें, द नंबर इज 9722455626 और विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मोगेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. एंड द नेक्स्ट वन, वेल इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी ताल.

Oh, baby.

0: 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
2: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
4: Matlab crispy golden dosa?
2: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
4: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
3: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
6: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Well, that was taken from DDLJ. जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. एंड वेल द नेक्स्ट वन, ये भी काफी हिट हुआ था गाना. एंड अनदर फन नंबर, आई एम श्योर यू विल एंजॉय.

ऑलराइट, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी मोहरा. और अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे. यहाँ है इज योर चांस टू विन $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ओनली डाइन इन. जी हाँ, ये सिर्फ डाइन इन पर ही पॉसिबल है. प्लस साथ ही साथ आप इंजॉय करें द स्पेशल थाली जो कि मंडे टू फ्राइडे मिलती है विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़ बाइट्स लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. आप विजिट कर सकते हैं chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. एंड येस, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द लास्ट वन मंथ, एज यू नो वी वॉन्ट मोर लिसनर्स टू विन दिस. सो आपको करना क्या है, आपको बस मुझे बताने हैं बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने जिन गानों में लिरिक्स में डांस या नाच आता हो, या कुछ ऐसा सजेशन हो रहा हो कि किस तरह नाचो, राइट, कौन सा डांस करो. सो एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव द वर्ड नाचो, नाचना, नाचेंगे, डांस, एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन द लिरिक्स, या फिर वो गाना सजेस्ट कर रहा हो कि किस तरह नाचो. सो वेल, अगर आपने मुझे ये तीन गाने बताए तो आप जीत जाएंगे ये $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 फॉर द डाइन इन ऑप्शन एट चंडीगढ़ बाइट्स .com. And well, the next one is Chamak Chalo. Mayank, thank you so much for tuning in, and here's the Chamak Chalo that you wanted to listen to.

0: ऑलराइट, तो हमने पूछा था सवाल कि बताए हमें कोई भी तीन बॉलीवुड के गाने जिनमें कि ये वर्ड नाच डांस या नाचना नाचेंगे ऐसे वर्ड्स आ रहे हों, या वो गाना सजेस्ट कर रहा हो कि कैसे डांस किया जाए. वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: यस यस ऑफ कोर्स.
0: जी बताइए कि कौन से तीन गाने हैं जिनमें कि नाच डांस या नाचा नाचना नाचेंगे या कोई गाना जो सजेस्ट कर रहा हो.
1: यस, पुरानी फिल्म भूत बंगला था ना, मैं भूत का, उसमें आओ ट्विस्ट करे. दूसरा ये है कि वो किशोर कुमार का एक गाना है ना, नाच मेरी जान फटाफट.
0: आपने मतलब.
1: और तीसरा और तीसरा गाना गुलाम फिल्म का है ना, आमिर खान और रानी मुखर्जी. चलो अती क्या खंडाला, नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे.
0: वेरी गुड. आपका नाम आपने नहीं बताया.
1: हाँ, मैं डॉक्टर प्राजक्ता मुड़े.
0: और डॉक्टर प्राजक्ता, तो आप होल्ड करिए, मैं आपको ऑफ एयर लेती हूँ एंड आई टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. आपने जीत लिया ये चंडीगढ़ बाइट्स का ये गिव अवे. आप होल्ड करिएगा, मैं ये खंडाला वाला गाना अपने लिसनर्स के लिए प्ले करती हूँ.
1: ओके ओके
0: जी, होल्ड करिए.
1: थैंक यू थैंक यू. ओके ओके, सो आई शुड बी ऑन द एयर ओनली ना.
0: यस.
2: क्या बोलती तू,

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. It's the time to clock out.
4: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: बेटा 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
14: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
14: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
13: और एंटरटेनमेंट?
14: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
14: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
15: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो।
16: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास, मारविन दास, मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीशा रेडियो।

0: thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, इस हमारे आखिरी सेगमेंट में हम प्ले करेंगे वो गाने जिन गानों में डांस, नाचना, नाचेंगे या कोई सजेशन हो कि नाचना है कैसे. ऐसे ही गाने सुनेंगे. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555.
1: This is the future, man.

नाचने की अपनी ही बहुत सी खूबियां हैं। कहते हैं कि जब आप डांस करते हैं ना, इफ यू आर मूविंग टू अ बीट, इट ट्रिगर्स अ नेचुरल रिलीज ऑफ फील गुड एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन दैट इंस्टेंटली लिफ्ट योर स्पिरिट्स। इसीलिए शायद पेपी पेपी गाने सुन के आप खुद भी थोड़े पेप्ड अप हो जाते हैं, नहीं? एंड ऑफ कोर्स इट्स स्ट्रेस रिलीफ इफ यू डांस, इट बर्न्स ऑफ एंशियस एनर्जी एंड हेल्प्स लोअर स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल करता है। एंड ऑफ कोर्स टोटल फ्रीडम, राइट? आपको कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है नाचने के लिए, यू जस्ट हैव टू मूव योर बॉडी एंड लेट योर माइंड यू नो टेक अ मच नीडेड ब्रेक। शायद इसीलिए जुम्बा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है एंड साथ ही साथ आई थिंक इट जस्ट फ्रेशन्स यू अप एंड इट्स फन वे टू एक्सरसाइज। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम Jitendra ji. Well, Jitendra ji, thank you so much. And here's the song that you wanted to listen to.

Absolutely, weekend hey, it's the time to disco. Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way, but it's now my time to kisco from here because Neelamayangi next to entertain you all. वेल मैं मिलूंगी आपको अगले शनिवार एंड इतवार, यानी कि सैटरडे संडे 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ ओनली इन जस्ट चिल, जहां करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% प्राइवेसी।
6: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you

0: try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: हेलो,
4: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है।
3: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner. What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
12: Every home has a story. Let's create yours together.
13: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.
14: एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फनेश रेडियो पर आप छो हमारी साथे तुम्हारी साथी संगति नीलम दवे नी साथे एजी फिनटेक सजी। हाँ, 4699429888 जो जो तमाम टेक्स नी सीजन पण आवी जशे। अत्यारना सप्टेम्बर महीनो चाली रह्यो छे, तहेवारोनी ज्यारे हारमाळा एकवार शुरू थई जाय, गणपति बाप्पा आवे, पछी नवरात्रि आवे एटले माताजी आवे, पछी दिवाळी आवे, जो जो तमाम वर्ष क्यां पती जाय छे खबर नथी पड़ती। સમયનું કામ છે, સમયનું ચક્ર છે જે હંમેશા નિરંતર ફરતું જ રહે છે, હે ને? તો પણ પહેલાં તમે એજી ફિનટેક્સનો નંબર લખી લો, 4699429888, દેટ ઇઝ agfintechs.com. તમારા માટે બિલકુલ વેરી ટ્રસ્ટેડ એન્ડ રિલાયબલ, તમે જ બિલકુલ ભરોસાપાત્ર જો કોઈ હોય તો એ છે એજી ફિનટેક્સ, તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ માટે કે બિઝનેસીસ માટે એક જ નામ, agfintechs.com. કાર્યક્રમમાં તમે હમણાં ટ્યુન ઇન કર્યું હોય તો તમારું પ્રેમભર્યું સ્વાગત છે. આ કાર્યક્રમ તમારા માટે હું નીલમ દવે પ્રસ્તુત કરું છું દર રવિવારની બપોરે. અને આજે આપણે ગણપતિ બાપાના કેટલાક શ્લોકનો હું તમને ભાવાનુવાદ પૂછી રહી છું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુમે દેવ શુભ કાર્યેષુ સર્વદાનો અર્થ તમે જ મને કહો. બીજો સવાલ પણ મેં પૂછ્યો છે જેના હજી મને આખા શ્લોકના અનુવાદ નથી આવ્યા. તો આ સવાલ હું તમને ફરીથી રિપીટ કરી લઉં અને છે, વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોધરાય શકલાય જગદ્વિતાય નાગાનનાય શ્રુતિ યજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે.

सवाल में पूछ्यो छे कपित जंबो फलचारो भक्षणम नो अर्थ तमे कारण के बधा ज शब्द जाणता ज हशो गजाननम भूतम गणादि सेवितम कपित जंबो फलचारो भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आ तो बधा तमे सरळताथी तमे अनुवाद करी शको। कपित जंबो फलचारो भक्षणम नो अर्थ एम थाय छे कि तमे भले जोया होय के ना जोया परंतु कोठा नामनो जे एक वृक्ष में एक फल आवे छे कपित जंबू फल चारो अने जांबू नामनू पण फळ तमने ए बन्ने फळ जे भक्षणम एटले कि जेमने अति प्रिय छे जेम लाडू एमने अति प्रिय छे एम कहेवाय छे कि कपित जंबू फल चारो भक्षणम। एटले आ बे जे फळ छे कोठा अने जांबू ए फळ गणपतिजीने घणा प्रिय छे अने एटला माटे ए श्लोकमां एनो उल्लेख थयो छे। तो आ बहावानो વાત કોઈ પણ હોય શ્લોક ચાહે ગણેશજીનો હોય કે જે પણ ઈશ્વરના સંસ્કૃતમાં જે શ્લોક છે દરેક શબ્દની પાછળ એ ઈશ્વરની કંઈક વિશિષ્ટતા હોય ઈશ્વરની કંઈક લાક્ષણિકતા હોય છે અને એ છે આ ઈશ્વરની વિશિષ્ટતા અને એ છે આપણા ગજાનનમ ગણાધિભૂતિ સેવિતમ।

0: And preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
3: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
9: Aakhir kya hai is biryani mein?
3: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
7: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: Sathiya.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

एंड वेलकम बैक 104.9 एफएम फनीश रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत आप सभी का। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो संडे आफ्टरनून। जी हाँ, सैटरडेज 12 से 3 के बीच में, संडेज 12 से 2 के बीच में। 1 बजे तक आपने मुझे गुजराती कार्यक्रम में सुना और 1 से 2 आपका और हमारा साथ होगा हिंदी गानों के साथ, लेकिन गैर फिल्मी बातें और गैर फिल्मी गाने। जी बिल्कुल, ये जो गाने होंगे बहुत ही सुरीले होंगे ताकि आपके वीकेंड की फेस्टिविटीज़ में एंड यू नो मोस्टली दिस वीकेंड एंड लास्ट वीकेंड आल्सो वाज लाइक दैट, सो मेनी इवेंट्स। ऑफकोर्स गणपति बप्पा इज़ हियर, सो कितने सारी पूजा, कितने सारे इवेंट्स, कितने सारे इन्विटेशन वी नो। और कहीं पे भी आपके इवेंट्स हो, नॉट ओनली टेम्पल इवेंट्स, लेकिन जहाँ पर भी आपके कोई इवेंट है, आपकी जो थकान है वो कहीं ना कहीं हम दूर करने की कोशिश करेंगे इन बहुत ही सुरीले गाने और लम्हों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ 2 बजे तक। तो चलते हैं पहले गाने की तरफ, और इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी बातें होती है हमारी OTT प्लेटफॉर्म की, गैर फिल्मी आर्टिस्ट की। कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो बैंड में होते हैं, सूफी गाने होते हैं हमारे पास, गज़ल की बातें होती है, हर कोई गाना जो बॉलीवुड में आप नहीं सुनते वो गाना हम आपके लिए लाते हैं ड्यूरिंग दिस आवर एवरी संडे। बने रहिए और ये सुर और संगीत के सफ़र में आपका और हमारा साथ होगा टिल 2 PM।

कभी कभी लगता है कि ऐसी अच्छी आवाज़ें हम बार बार क्यों नहीं सुनते, है ना। और वो जो अच्छी आवाज़ आपने अभी सुनी वो है राज बर्मन जी की, जिन्होंने बहुत सारे बांग्ला में गाने गाए हैं लेकिन नॉट एज मैनी इन हिंदी। खैर, कम गाए हो तो क्या है, लेकिन अच्छी आवाज़ें हैं, अच्छे गाने हैं, तो बिल्कुल आप सुनेंगे मेरे साथ एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM। और राज बर्मन के बाद अब सीधा चलती हूँ मैं आपको एक ऐसी आवाज़ जो बहुत जल्दी हमारे बीच से चली गई, बहुत बहुत जल्दी। जी हाँ, नाज़िया हसन की मैं बात कर रही हूँ, जो पहली बार इंडस्ट्री में आई थी बॉलीवुड में। उन्होंने एक गीत गाया था, इफ़ यू रिमेंबर आप जैसा कोई, एंड दैट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम वी हैड एनी पाकिस्तानी सिंगर इन द बॉलीवुड। और इतना ही नहीं, वेरी फर्स्ट टाइम उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर दैट सॉन्ग। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किया था, बट शी डिड हैव मैनी प्राइवेट एल्बम्स। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि जितनी हमें ज़रूरत थी शायद अल्लाह को भी उनकी इतनी ही ज़रूरत थी। एंड दैट इज़ नाज़िया हसन ऑन 104.9।

आंखें मिलाने वाले भाई नाज़िया हसन। और चलिए अब मैं आपको एक ऐसी आवाज़, एक नहीं दो आवाज़ें एक्चुअली साथ में, यस साथ साथ में ड्यूएट की तरफ ले जा रही हूँ, जो आपके मेरे सभी के बहुत ही पसंदीदा गायक है, एंड दैट इज़ जगजीत एंड चित्रा जी। डू यू रिमेंबर देर वॉज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर गज़ल, और बहुत इतनी वो पॉपुलर गज़ल है कि हमने बहुत दफ़ा सुनी है, सुदर्शन फ़कीर की है वो, जिसमें कागज़ की कश्ती। वही जो शायर है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गज़ल लिखी है खुद जगजीत सिंह साहब के लिए। देर वॉज एन एल्बम जिसका नाम था द लेजेंड्स, और इसमें दोनों की यानी कि चित्रा जी की और जगजीत की बहुत अच्छे अच्छे ड्यूएट गज़ल्स है, एंड ईच एंड एवरी थिंग इज़ रिटन बाय सुदर्शन साहब। तो ये एक और बहुत ही खूबसूरत उनकी गज़ल जो शायद इतनी बार बार हमने नहीं सुनी, बट इक्वली मेलोडियस, इक्वली डीप एंड इम्पैक्टफुल, बाय जगजीत जी एंड चित्रा जी।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज और संगीतकार रोचक कोहली जी हाँ, और आप हैं मेरे यानी नीलम के साथ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। दो बजे तक होता है ये आपका और हमारा साथ। गर्मियाँ कुछ कुछ कम हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी हो रही है कम, तो उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। चलिए उम्मीद की बात पे, हेल्थ की बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो भाई जहान है। अगर कभी कभार ये हो जाता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, या फिर यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू सर्टेन डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, पैशन हेल्थ अगर आप जाना चाहें एंड दे आर नॉट इन योर नेटवर्क, वेल नो वरीज, आप बिल्कुल उनका जो एक प्लान है विच इज़ हेल्थ डायरेक्ट फॉर ओनली $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड टेली हेल्थ, ये सारी बातें इंक्लूड होती है इस प्लान में। यू कैन कॉल देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 214-666-6259, और यू कैन विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम, एंड वंस अगेन दैट इज पैशन हेल्थ 214-666-6259। वीकेंड्स के राहों की हूँ मैं रहे गुजर, गाड़ी में नहीं भी है, घर पे भी है, कोई बात नहीं भाई, घर पे भी हम आपका साथ देते हैं। किचन हो, क्लीनिंग की बातें चल रही हो, बहुत सारी डीप क्लीनिंग की बातें चल रही हो, बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की एक्टिविटीज़, कहीं पर भी आप है, हम रहते हैं आपके साथ इन गानों के साथ और ढेर सारी बातों के साथ। कमर्शियल ब्रेक के बाद भी कुछ और बातें हैं, गाने हैं, वेब सीरीज़ के गाने कुछ लाई हूँ आपके लिए। उसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत गाना है सलीम सुलेमान के साथ, एंड यू नो दे डू लॉट ऑफ प्राइवेट कॉन्सर्ट, सो उनका भी एक गाना सुनेंगे। बातें भी होगी टॉप 5 ट्रेंडिंग वेब सीरीज की, लेकिन सारी आफ्टर द ब्रेक।
1: मोमेंट्स डोंट फेड, दे एको लाइक अ मेलोडी दैट नेवर लीव्स यू, एंड इन दोस मोमेंट्स व्हाट यू वेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेलोडी। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डेलिस, PMJ Jewels, timeless craftsmanship, unmatched elegance and stunning bridal collections. Now in Main Street Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: एक और लड्डू ले लो।
5: थोड़ी और बिरयानी।
4: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
8: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: It's the time to crack out.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
15: Bindas bolo.
2: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
9: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

एंड वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशिया रेडियो एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ओमर ख्वाजा, जिनका नंबर है 4693005046 और यू कैन विजिट eternewomar.com. समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी कार एक्सीडेंट में, ट्रक एक्सीडेंट में, एंड इफ़ यू आर इंजर्ड, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, बिल्कुल ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के दौरान अगर आपको कोई एक ऐसी मदद चाहिए जो आपके लिए आपके इंश्योरेंस क्लेम्स को आपके साथ लड़ सके, देन वेल इट इज़ मिस्टर अटर्नी ओमर. उनके नंबर वंस अगेन इज 4693005046 एंड यू डोंट पे अंटिल यू वेन. जी बिल्कुल, यह है उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात कि फ्री कंसल्टेशन है और आपको कोई भी बात उनको पे नहीं करनी. चलिए आज गैर फिल्मी गानों की बातें चल रही है, गैर फिल्मी गानों के साथ कुछ वेब सीरीज की भी बातें करेंगे, टॉप ट्रेंडिंग वेब सीरीज की हम बातें करेंगे और उसके अलावा कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स की भी बातें होती रहेंगी आपके साथ ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. गुलक सीजन 3 से सुनते हैं ये गीत और उसके बाद टॉप 5 में क्या क्या हो रहा है आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे.

गुल्लक सीजन 3 से लिया हुआ था ये गीत, जो बहुत ही खूबसूरती से पेपोन साहब ने हमें दी थी उनकी आवाज़ इस सीज़न में। अगर आपने गुल्लक सीज़न 1 एंड 2 देखी होगी तो सीज़न 3 भी आपने बिल्कुल अब तक देख ली होगी। नहीं देखी है तो बिल्कुल प्लान कीजिएगा, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास परिवार है, मिश्रा परिवार है, दिल्ली के मिडिल क्लास एंड वेरी हम्बल हम्बल बैकग्राउंड जो है, तो उनकी ज़िंदगी में कितनी खट्टी मिट्टी बातें होती है। एंड इट इज़ वेरी रिलेटेबल स्टोरीज, राइट? जो हम एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या तकरार हो सकती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बजट से लेके ये वो सारी बातें, पारिवारिक रिश्तों की बात है, करियर की बात है, स्ट्रगल संघर्ष, वो सारी बातें बहुत ही गहराई से हर सीज़न में दिखाई गई है, इंक्लूडिंग इन सीज़न 3। लेकिन संतोष मिश्रा जो उसके पापा बने हैं इस गुल्लक सीज़न में, तो वो ये कहानी में आई थिंक सीज़न 3 में दे हैव मेड इट लिटिल बिट मोर ड्रामेटिक। आई वुडंट से यू नो कम्प्लीटली ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली बात है, इट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल स्टोरी, लेकिन फिर भी कुछ कहानी में कहीं ना कहीं इमोशनल बात भी है जो आपको सीधी छू जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी अगर ये सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी। दैट इज़ वंस अगेन गुल्लक सीजन 3 की कर रही हूँ मैं बातें। तो सीरीज़ की बातें करते हैं हम, बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पे जो नई फिल्म आती उसकी बातें करते हैं, कुछ प्राइवेट एल्बम से लेके, गज़ल से लेके, ऐसे ही गाने आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम, एवरी संडे बिटवीन 1 एंड 2।

0: wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: 104.9 FM Phoenicia पे बातें हो रही है कुछ गैर फिल्मी गानों की, गैर फिल्मी कलाकार. Well, when I shouldn't say गैर फिल्मी कलाकार, what is that गैर फिल्मी कला, प्राइवेट एल्बम्स वाले कलाकार, चलिए ऐसा. एंड यू नो, ऐसा भी नहीं है कि वो फिल्मों में नहीं गाते, बट आई थिंक दैट कुड बी अ चॉइस ऑल्सो. कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कैन रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ माई हेड, प्रतिभा बघेल, ये जो एक ऐसी कलाकार है, अदाकारा तो नहीं कहूँगी, गायक कलाकार है. शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब इंटरनेशनली. शी हैज़ डन सो मैनी एल्बम्स, रोंकिनी गुप्ता, आई एम लाइक द नेम गोज ऑन. उन्हें मिलती होगी, आई एम श्योर उन्हें भी बॉलीवुड के गाने मिलते होंगे या वेब सीरीज़ के. सो दे डू वेब सीरीज़ बट नॉट एज मैनी बॉलीवुड. तो ये जो सारे प्राइवेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो इतनी अच्छी तरह से उनकी जो टैलेंट है उसे एक्सपोजर उन्हें मिलता है, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट कन्फाइंड टू बॉलीवुड. ऐसा नहीं है कि भाई हमने फिल्मों में नहीं गाया तो हमें कोई पहचान है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब पहचान के लिए बहुत सारे एवेन्यूज बन गए हैं, है ना. तो एक ये एवेन्यू ये भी है हमारा रेडियो, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसे ही बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत आवाज़ें ऑन एवरी संडे. चलिए, जब मैं बात करती हूँ टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास की, तो सफ़ेद सागर इज़ स्टिल ऑन टॉप. जी हाँ, और बहुत हफ्तों से ये ट्रेंड पे रहा है ऑपरेशन सफ़ेद सागर. तो बिल्कुल आपको अगर पसंद है ऐसी सारी कहानियाँ जहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की भी बात है, संघर्ष की बात है, बलिदान की बात है, और ये सच्ची कहानी पर आधारित है ये सीरीज़, तो ज़रूर देखिएगा. लव स्टोरीज 3 एक्चुअली जस्ट रिलीज हुई है, जिसमें अली फजल, विजय वर्मा एंड कोकणा सेन है. एंड अगेन, इफ यू हैव सीन पार्ट 1, पार्ट 2, इट इज़ नथिंग टू डू विद द सीक्वेंस एज सच, लेकिन जस्ट ब्रांड, इट इज़ जस्ट दैट नेम. तो जहाँ पर अगेन इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग. वन थर्ड वन इज़ प्रीतम एंड पेड्रो, एंड ये जियो हॉटस्टार पर चल रही है, जहाँ पर साइबर क्राइम की, एंड यू नो इन रिसेंट पास्ट इंडिया में भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं. तो अर्शद वारसी के साथ है विक्रांत मेसी इस सीरीज़ में, एंड दैट इज़ पीटर एंड पेड्रो. और भी दो सीरीज़ है जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है इस हफ्ते, कौन सी, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़. जब मैं बात कर रही थी कि गैर फिल्मी गाने ज़्यादा गाते हैं, एक ऐसे कलाकार है जिनका नाम है विपुल मेहता. ही डज मेनली सिंगिंग ओनली फॉर सलीम सुलेमान्स कॉन्सर्ट. सुनिए उनकी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही गहरी आवाज़, ऑन 104.9 FM.

क्या बात है। और ये जो कलाकार है इतने बहुत ही खूबसूरती से जो सुर के साथ खेल रहे थे, दैट इज़ विपुल मेहता। और ये कलाकार सिर्फ और सिर्फ सलीम सुलेमान के साथ उनकी लाइव कॉन्सर्ट होती है, भूमि वगैरह वगैरह, वो एवरी ईयर करते हैं। इट इज़ लाइक यू नो दे डू सो मैनी डिफरेंट कॉन्सर्ट्स एंड दैट इज़ विपुल मेहता। ही इज़ वन ऑफ द सिंगर्स इन हिज ट्रुप। एंड एज आई सेड यू नो, ये सिंगर्स को कभी भी ऐसी कमी नहीं लगती होगी कि भाई मुझे लोग पहचानते नहीं है, आई एम नॉट अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। बिकॉज फॉर देम संगीत एक आराधना है, वो आराधना कहीं पे भी हो सकती है। और ये ऐसे कलाकार हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हमें कभी कभी लगता है कि शायद गुमनामी में कहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सच्चे कलाकार होते हैं वो अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ ही लेते हैं अपनी पसंद की तरफ से। और उनकी जो भी उनकी एक अलग राय होती है, हर किसी की राय अलग होती है। किसी को लगता है कि भाई फिल्मों में काम करना इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर करियर, एंड दैट्स व्हाट दे डू। चलिए इसी बात पर एक और कलाकार को याद कर लेती हूँ, सोनू निगम, एंड ही विल बी लाइव हियर। जी हाँ, आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग ऑन September 26, 8:30 PM, क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। टिकट्स के लिए 855-360 शोज, दैट इज 855-360 शोज। सोनू निगम लाइव वंस अगेन ऑन September 26। बस ऐसे बहुत सारी बातें होती है कलाकारों की, ढेर सारे कॉल्स के साथ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका सभी का, आप सभी का, हमें जो कॉल करे उनका भी, जो कॉल ना कर पाए उनका भी, हमें सुनने के लिए बस बहुत है इतनी बात भी हमारे लिए। और मैं बात कर रही थी टॉप ट्रेंडिंग की, देख रही हूँ घड़ी के सामने 5 मिनट बाकी है, तो जल्दी जल्दी आपको बता दूँ कि चुंबक भी आज जो है, जी हाँ चुंबक, लाइक अ मैग्नेट, यस दैट इज़ अ वर्ड, चुंबक दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग, क्योंकि इट्स अ फैमिली कॉमेडी। एंड यू नो हम अक्सर ऐसे ही लाइट हल्की फुल्की कॉमेडी की तलाश में रहते हैं, राइट। तो अगर आपने नहीं देखी ये सीरीज़ तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग एंड गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स। इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आज के लिए अनुमति, आज्ञा, इजाज़त। मुलाकात होगी शनिवार, अगले शनिवार 12 से 3 के बीच में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एन्जॉइंग फनेशा रेडियो।

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो। भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इस powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
10: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
9: And pistachio lamb chops,
10: full on flavor ka fusion.
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
13: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थे?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी संडे की इवनिंग में और दोपहर में आप सभी का। संडे के इस दोपहर में हमारा और आपका साथ रहने वाला है दोस्तों तीन बजे से लेकर छह बजे तक। तो जुड़े रहिए तीन घंटे के इस खूबसूरत म्यूजिकल सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी दीवानी तूफानी बेगानी रेनी फोगी गर्मी वाली। और आज जैसे जी हाँ, बहुत कड़ाके की गर्मी वाली। कैसी भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

0: Lisa.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
9: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
12: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रहे हैं एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 p.m. ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.

दिल ऑफ डैलस 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो भाई एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट जैसे कि आपको लास्ट टाइम बोला था कि अमरीन जी छुट्टी पे है तो उनके शो को फिल इन करने मैं यहाँ पर आ गई हूँ 3 से 6। तो आज और आपका और मेरा साथ रहने वाला है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और 6 से 8 कोई दूसरे आरजे मेरा शो कवर करेंगे। तो भाई वैसे तो कोई थीम नहीं है हमारे शो की, ऐसे ही अटरंगी पतरंगी कुछ नए कुछ पुराने कुछ इन बिटवीन हटके गाने यहाँ पर चल रहे हैं ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है या फिर कोई गाना किसी को डेडिकेट या फिर फरमाइश है, और कोई गाना दिल के कोने में छुप के बैठा है, और कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, कीजिए मुझे कॉल। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। But जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव, दैट इज द ओनली कंडीशन। और विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। इस गाने की रिक्वेस्ट की है भाई प्रवीण साहब ने, तो वो सुनना चाहते हैं गाना ये वाला, क्योंकि बाहर का मौसम क्यों कुछ ऐसी हो चला है कि धूप भी है और थोड़े से क्लाउडी वेदर भी है, और फिर पता है रेन की संभावना है। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं, और अगर रेन आता है तो फिर thanks to this song।

Awesome, awesome, awesome. दोस्तों सोनाली बिंद्रे और अक्षय खन्ना पे पिक्चराइज दहक मूवी से सुन रहे थे आप ये गाना। रिक्वेस्टों की लाइनें तो लग चुकी है दोस्तों, तो अगर आपको भी आपकी कोई रिक्वेस्ट क्विज़न करनी है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले आप सभी को बता दूं दैट लेड बाय सीपीए सुधीर भाई माय टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। विजिट माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम और यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4697021272। अगला गाना सफी की रिक्वेस्ट पर टेकन फ्रॉम द मूवी 102 नॉट आउट।

अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पे पिक्चराइज्ड वन और टू नॉट आउट से लिया था दोस्तों ये गाना। ऐसे ही गाने चलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ इन बिटवीन हटके गाने। तो अगर आपको भी आपकी पसंद का गाना क्यों इन करना है, क्यों अप करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो का नंबर 972-235-55-55। साथ रहने वाला है आपका और मेरा शाम के ठीक 6 बजे तक। मैं बोले तो आपकी अपनी अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। अगला गाना तेज की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए बैंगर बाय बादशाह।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

बहुत मजा आता है मुझे यहाँ पर जब मैं आपके पसंद के गाने आपके लिए प्ले करती हूँ. तो कीप द सॉन्ग्स कमिंग इन, कीप द रिक्वेस्ट कमिंग इन. स्टूडियो का नंबर 9722355555. कुछ गाने मेरे पसंद के, कुछ गाने आपके पसंद के, नए होंगे या पुराने होंगे, कोई भी गाने चलेंगे. बट द ओनली कंडीशन इज दैट गाने 1990 एंड अबव के होने चाहिए. बस अगर ये कंडीशन आप ध्यान में रखते हैं और कॉल करते हैं तो बिल्कुल आपका आपकी मंजिल आपके बिल्कुल करीब है और आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं. तो चलिए इसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ इस गाने की तरफ. इस गाने की रिक्वेस्ट आई है संतोष साहब की तरफ से. टशन में, ये टशन का गाना सुनते हैं.

जी हाँ भाई, टशन में तो टशन का गाना सुन लिया आप लोगों ने, तो चलिए इसी तरह इसी प्रकार हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं। ये अगला गाना और अगली रिक्वेस्ट सुनते हैं जो कि सोहेल साहब ने की है अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ मरियम के लिए। जी हाँ, वो ये गाना उनको डेडिकेट करना चाहते हैं और इस गाने के बाद आने वाला है दोस्तों छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा।

जिंदगी के कई रंगों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 4:06 और दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी अपनी होस्ट आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज ये साथ कुछ कारणवश चेंज हो गया है। आज आपका साथ देने वाली हूँ 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इस 3 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए, जहाँ पर आप आरजे को सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। चलिए भाई विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उन सभी को बता देती हूँ कि आज के हमारे शो की ऐसी कुछ थीम नहीं है दोस्तों, ऐसे ही हल्के फुल्के गाने चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ इन बिटवीन हट के गाने। तो अगर आपको भी आपके पसंद के गाने रिक्वेस्ट करने हैं 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो एंड टू टॉक टू मी। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ इस गाने की तरफ जिसकी रिक्वेस्ट आई है रिया की तरफ से, टेकन फ्रॉम द मूवी कृष्णा कॉटेज।

This part of our show is brought to you by the law offices of Omar Khwaja. Injured in a car, truck or slip and fall accident, focus on healing while attorney Omar fights for you and you pay nothing unless he wins. This is their motto. So please call them. The number to call is 469-300-5046 or you can visit their website which is attorneyomar.com. बहुत सारे गाने आपके ही पसंद के चल रहे हैं दोस्तों. यहाँ पर तो एक गाना भाई मेरे पसंद का भी हो जाए, इतना भी बुरा चॉइस नहीं है मेरा. वेल नॉनदलेस, अगर आपको कोई गाना रिक्वेस्ट करना है या फिर किसी को डेडिकेट करना है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और किसी कॉलर ने मुझे अभी कॉल करके बोला कि बाहर बारिश हो रही है, तो चलिए बारिश के गाने अगर आपको रिक्वेस्ट करने हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 9722355555. फिलहाल ये गाना मेरे पसंद का, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जरूर यहां पर प्ले होगी.

चित्रा और शान की आवाज में सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना ऋतिक रोशन, अमित अभिषेक बच्चन और करीना कपूर पे पिक्चर ऐसी ये मूवी अमेजिंग मूवी थी। अगर नहीं देखी है आप लोगों ने तो प्लीज गिव इट अ वॉच। चलिए भाई अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले गाने की रिक्वेस्ट आई है महामित साहब की तरफ से और ये गाना और वो ये वाला गाना सुनना चाहते हैं, टेकन फ्रॉम द मूवी सिंग इज किंग।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: बेटा 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: Tracks that put you on the right track.

वेलकम वेलकम वेलकम दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 4 और डेढ़ घंटे का सफर बचा है आपका और मेरा, अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी वाला सफर। तो चलिए लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। किसी लिसनर ने मुझे कहा था कि बाहर बारिश हो रही है, सच में बारिश हो रही है क्या? अगर हो रही है तो प्लीज गिव मी अ कॉल वंस अगेन, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। तो चलिए, अभी उन्होंने जस्ट कहा था कि बारिश शुरू हो गई है या फिर होने वाली है या फिर ऐसा ही कुछ चल रहा है। मैंने तो कोई स्टूडियो से बाहर जाके देखा नहीं है कि सच में बारिश हो रही है नहीं हो रही है, बट वो बारिश की जो फीलिंग होती है उसको ही याद करते हैं और चलिए कुछ बारिश पर के गाने सुन लेते हैं। With that, आपको लेकर चलती हूँ इस गाने की तरफ जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, संग बाय नेहा कक्कड़।

हाफ गर्लफ्रेंड से सुन रहे थे दोस्तों आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। ऐसे ही प्यारे एक भाई एक गाने सुनते रहेंगे आप यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर शाम के ठीक 6 बजे तक। अगले गाने की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 469-942-9888 or you can visit their website which is agfintechs.com.

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: ब्यूटीफुल गाना दोस्तों सुन रहे थे आप, रहना है तेरे दिल में आर एच टी डी एम से। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को बता देती हूँ कि ब्रेक के आने के बाद आपके लिए एक अमेजिंग सा गिव अवे मैंने लाइन अप करके रखा है, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा। यू गई और यू आई।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Film

0: Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: How may I help you?
9: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
8: Fear not, we have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 6:05, अब और कुछ 5 मिनट सॉरी थोड़ा सा अलग उल्टा पुल्टा हो गया, बट कुछ नहीं भाई, भूल चुक माफ होती है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। बहुत ही कमाल धमाल की गाने चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ इन बिटवीन हट के गाने। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था वादे के मुताबिक आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा गिव अवे। गिव अवे के बारे में डिटेल्स आपको दे रही हूँ अभी। आपको बता देती हूँ दोस्तों दैट फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप एंड दीज आरंट जस्ट पिज्जास, दे आर अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। From the fresh veggie to the fiery Polo Loco, the seafood packed Senor Cameron, every bite is bold, exciting and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and test the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, you can visit funpizzakitchen.com. And now, also, here is your chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a simple, simple question. आपको मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की हमारे कि जो कल के दिन, जी हाँ कल की तारीख है 21st of September, कल के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है उसका नाम आपको मुझे बताना है। स्टूडियो का नंबर 9722355555। ये गाना उस एक्ट्रेस पे डेडिकेटेड है, तो आपको बस जल्दी से जल्दी हमारा जो स्टूडियो का नंबर है उसको मिलाना है 9722355555 और मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो कल यानी कि 21st of September को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। जो भी मुझे सबसे पहले और सही जवाब देगा वो जीत जाएगा $10 gift card from Fun Pizza Kitchen। एंड Here is your song.

ब्यूटीफुल गाना दोस्तों सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी रेफ्यूजी. अनगिनत कॉल्स आए मुझे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. अभी भी कॉल्स बस हो रहे हैं, बट एक्चुअली गिव अवे किसी ने जीत लिया है. जिन्होंने गिव अवे जीता है उनका नाम है अमीषा जी. जी हाँ, अमीषा जी ने मुझे सबसे पहले कॉल किया और बताया बिल्कुल सही जवाब कल, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है. शी इज नन अदर देन बेबो. और ये मुझे सही जवाब दिया है अमीषा जी ने, तो तालियां अमीषा जी के लिए. जी हाँ, भले भले हो गया है. करीना कपूर खान करती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट ऑन सितंबर 21. तो कल है भाई करीना हमारी बेबो का बर्थडे, तो क्यों ना भाई हम उनका बर्थडे थोड़ा सा अर्ली ही सेलिब्रेट कर ले. वैसे तो 21 आ चुका है इंडिया में, तो ऑलरेडी उनका बर्थडे स्टार्ट हो चुका है. सो करीना कपूर खान को मेरी तरफ से, हमारी पूरे डैलस के लिसनर्स की तरफ से और फन एशिया टीम की तरफ से अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. सो चलिए विद दैट उनको डेडिकेशन देते हैं और उनके ही कुछ गाने सुनते हैं. जैसे कि ये इनको कहा जाता है बॉलीवुड की बेबो, तो चलिए बेबो का ये वाला गाना सुन लेते हैं.

कम वक्त इश्क मूवी से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना। जी हाँ, बेबो कपूर खान जो कि है करीना कपूर खान, वो कल करती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट September 21st। सो विशिंग आर अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और उनको ही डेडिकेशन देते हुए और उनके ही बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए ये वाले अगले गाने सुनते हैं उनके ही फिल्मों के, जो कि बहुत फेमस फिल्में हैं उनकी और बहुत ही ज़्यादा चली थी। बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन ऑफ द यू नो गुड यू नो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टेक्सास प्राइम Primary care. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lenoxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services, all under one roof. It is open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. No appointment needed.

0: टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
8: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
13: Nation ka fun station, Fun Asia Radio. Bono.

नेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क व्हिच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका आज साथ दे रही हूं इस संडे की खूबसूरत सी शाम में आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 35 मिनट्स पास्ट 5। बस कुछ चंद मिनटों का 20-25 मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा। सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट और कुछ धमाकेदार कमाल धमाल के गाने सुनते हैं यहाँ पर।

0: सोनू निगम रिवॉल्यूशन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट। Experience Revolution on Saturday, September 26 at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, you can call the number. The number to call is 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live, exclusive media partner, Fun Asia Network.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

बजरंगी भाईजान से सुन रहे थे दोस्तों आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गिव इट अ वॉच, बहुत ही लवली और प्यारी सी मूवी है। अगले गाने की तरफ चलेंगे दोस्तों, बट इससे पहले बता दूं दैट अटेंशन टेक्सास बिजनेस ओनर्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी विच इज प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 8444282808 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज taraenergy.com today.

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टोरी ओके घड़ी में हो चुकी है 52 मिनट्स पास्ट 5। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और कहती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल 6 to 8 PM के बीच में मिलने का वादा। This is your host Rajya Purwa signing off for tonight. Dosto, have a great night ahead, Dallas, and have a beautiful Monday morning and the rest of the week ahead. Bye bye and good night.

0: For all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye million dollar property bhi.
1: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
2: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
12: We need to talk.
13: अब क्या हुआ?
12: Nothing, it's not you.
13: Oh no.
12: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
12: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Are you trying to protect your business, retain top talent and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
6: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
14: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे जिसका नाम है नन अदर देन फन एशिया रेडियो 104.9

89 FM. आप सोच रहे होंगे ये कौन सी आवाज है, ये किसकी आवाज है? यस, आई एम आरजे केत की, आई एम फिलिंग अप फॉर अपूर्वा, हमारी और आपकी फेवरेट आरजे अपूर्वा, जो अभी अभी शो करके गई. उनको कुछ काम था इसीलिए आई एम फिलिंग अप फॉर हर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपूर्वा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट शो. व्हाट अ सॉन्ग लाइंड अप, ओ माय गॉड, दैट वाज अ वाइब. एंड यस, हम लोग भी हैप्पी हो गए आपके इस हैप्पी प्लेस से. सो सबके लिए हैप्पी हैप्पी करके अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं, जो है मिक्स्ड टेप. अपूर्वा अभी नहीं है तो मैं शो कर रही हूँ फ्रॉम 6 to 8. तो शो की शुरुआत तो करनी चाहिए हमारे और आप सभी के फेवरेट गणपति बाप्पा को वंदन करके. तो हियर्स द सॉन्ग, लेट्स से गणपति बाप्पा मोरिया.

バカな、マスター。

बोलो गणपति बप्पा मोरिया। चलिए आज का शो थोड़ा हटके है, क्यों? क्योंकि अभी बप्पा का हमने जस्ट नमन किया, उनको क्या पसंद है? उनको पसंद है मोदक। वैसे हम सबको क्या पसंद है? अलग अलग फूड आइटम्स, अलग अलग क्यूजींस, राइट? सो आज का थीम उसी पे बेस्ड है, क्योंकि टुडे वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू लिसन टू सॉन्ग्स बट वी आर गोइंग टू ईट देम। हाँ जी, आपने सही सुना, आज के शो में कैलोरीज जीरो होगी, क्योंकि खाना सिर्फ गानों में है, सामने नहीं कि जो हम खा रहे। तो गिल्ट फ्री म्यूजिक एंड गिल्ट फ्री फूड। आपने म्यूजिक में लव सुना होगा, हार्ट ब्रेक सुना होगा, बारिश सुनी होगी, लेकिन कभी नोटिस किया है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स में फूड भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है? कभी चाय की बात है, कभी पान का जिक्र, कभी आलू तो कभी पानी। और आज हम इन्हीं फूड आइटम्स को लेकर बनाएंगे एक डिलीशियस म्यूजिकल जर्नी। अभी बाप्पा का नाम लिया है, तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं और घर ढूंढ के मॉर्गेज कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक। सिंस 1998, ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज नेशन वाइड विथ पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग। कॉल 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com। I'll repeat the number 972-245-5626. Dream Home Mortgage, making dream homes happens. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फूड का नाम लिया है, गानों का जायका चल रहा है, तो चाय के बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट सॉन्ग इज, यस यू गेस्ट इट राइट, इट इज गरम चाय की प्याली होम।

दैट वॉज एक गरम चाय की प्याली हो फ्रॉम द मूवी हर दिल जो प्यार करेगा, संग बाय नन अदर दैन अनु मलिक जी। अभी आपको क्या लगा, चाय का जिक्र किया तो मैं गाना चलाऊंगी शायद मेरी शादी का ख्याल एंड ऑल दैट? नहीं नहीं, वो तो सॉन्ग रह गया बूमर्स का एंड मिलेनियल्स का। अभी तो सलमान भाई बोलते हैं कि इट्स डन ब्रो, तो इसीलिए उन्हीं के गाने से शुरुआत हमने की, जहाँ पे आज की जनरेशन बिलीव्स मोस्टली ऑन चाय डेट्स या फिर कॉफी डेट्स। वैसे चाय एक सिर्फ ड्रिंक नहीं है, चाय इज एन इमोशन। मॉर्निंग में चाय, ऑफिस में चाय, फ्रेंड्स के साथ चाय, गॉसिप के साथ चाय, और जब कोई बोलता है कि अरे सुन एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो हम तुरंत कह देते हैं पहले चाय बनाओ, चाय के बिना डिस्कशन कैसे होगा। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम की भी शुरुआत थी चाय के साथ। पर वहाँ पे अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, जैसे उनको चाय पसंद नहीं, तो कोई नहीं, बॉलीवुड ने उसका भी ऑप्शन दे दिया है, सब कुछ है बॉलीवुड में। तो हियर कम्स द सॉन्ग फॉर दोज पीपल हु डजंट लाइक चाय, वी हैव शरबत।

दैट वॉज तू रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो। वैसे मुझे पसंद है काला खट्टा, आपको क्या पसंद है, कौन सा फ्लेवर पसंद है, फोन कीजिए और मुझे बताइएगा जरूर। स्टूडियो नंबर इज 9722355555 एंड आई नो देर आर फ्यू कॉफी लवर्स टू, सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू गाइज।

0: दैट वॉज फॉर ऑल द कॉफी लवर्स आउट देयर. तो ये प्रोग्राम चल रहा है गानों का जायका, फूड, फन एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM विथ मी आरजे केतकी. टाइम है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद मिलते हैं.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: एक और लड्डू ले लो.
8: थोड़ी और बिरयानी.
7: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा.
9: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
10: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
15: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
16: Every home has a story. Let's create yours together.
17: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
18: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
17: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
18: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
19: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
20: Kya matlab?
21: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
21: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
8: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
11: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।
0: स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे जो है फन एशिया रेडियो 104.9 FM। मैं हूँ आरजे केतकी और जो जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो लिसनर्स अभी जुड़े हैं, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जो अभी जुड़े हैं, उनको बताते जाऊँ कि आज के सेगमेंट है खाने के बारे में। यस, बट गिल्ट फ्री खाने के बारे में, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं ऐसे गाने या फिर सुन रहे हैं ऐसे गाने जिसमें छुपे हैं फूड आइटम्स। यस, गानों का जायका, फूड फन एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, दिस इज व्हाट दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट। लेट्स हॉप टू द नेक्स्ट सॉन्ग एंड देन वी विल डिस्कवर व्हाट फूड आइटम वाज देयर इन द सॉन्ग।

0: दैट वॉज तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं फ्रॉम द मूवी कूली नंबर वन फीचरिंग वरुण धवन एंड द क्यूट सारा अली खान. लगता है मैंने सारे लिसनर्स के टेस्ट बर्ड्स जागरूक कर दिए हैं. अभी अभी इवान हमारे छोटे छोटे बड़ी का लिसनर का फोन आया था एंड ही हैज रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग विच इज एक्चुअली लाइक फॉलिंग इन टू द डेजर्ट कैटेगरी. बट अगर उन्होंने किया है रिक्वेस्ट तो उनकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर एंड हियर कम्स द सॉन्ग दैट इवान यू रिक्वेस्टेड.
1: Hurry up now.
2: Yo, is she still here?
3: Yeah, she's still here.
2: I'm going in.
3: Oh, nah, my brother. I'm going in. Go to lunch.
2: Yo!

दैट वॉज जलेबी बेबी. अभी इतना सब कुछ खा के थोड़ी प्यास तो लग रही है, राइट? तो सफी जी है, उन्होंने किया है रिक्वेस्ट एक सॉन्ग, वो सॉन्ग सुनेंगे. लेकिन जो जो लिसनर्स अभी हमें जुड़े हैं उनको बताती जाऊं, दिस इज आरजे केत की एंड यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो. और आज चल रहा है म्यूजिकल फूड जर्नी का सिलसिला. यस, गानों का जायका जहाँ पे है फूड, फन एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. तो अभी तक हमने बेवरेजेस देख लिए, थोड़ा सा डेजर्ट भी खा लिया, और अभी टाइम है थोड़ा पानी पी लेते हैं. क्या बोल रहे हो? चलो, सो लेट्स हियर दिस सॉन्ग एंड देन वी विल कम बैक टू द नेक्स्ट सॉन्ग्स विच विल हैव अदर फूड आइटम्स इन इट.

दैट वॉज बरसो रे मेघा मेघा, और उसी मेघा से हमें मिलता है पानी। आप सुन रहे हैं गाने का जायका, जहाँ पे चल रही है बातें फूड आइटम्स की, जो है अलग अलग बॉलीवुड के सॉन्ग के लिरिक्स में। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सेगमेंट। आज है संडे, स्टूडियो के क्लॉक में बज रहे हैं 6:54, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 FM, विच इज फन एशिया रेडियो, और मैं हूँ आरजे केतकी। ये सब खाने की बातें सुनकर अगर आपको लग रहा है कि अरे नेक्स्ट इवेंट में मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए, बहुत अच्छा वेन्यू चाहिए, तो फिकर नॉट, आरजे केतकी हैज गॉट योर बैक। सो देयर इज अ वेनेसा इवेंट्स, प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन। सो बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, कैटरिंग एंड ऑल अदर लिटिल डिटेल्स, हियर इज वन नेम दैट यू शुड नो, विच इज वेनेसा इवेंट्स। करेक्ट, दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, from venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. So you can focus on making memories while they can take care of the rest. Call Hari Basera today at 469-442-8770. I'll repeat the number, 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. अभी हमारी बात हुई पानी की, beverages की, पर सबसे important element in the kitchen is, or in the food item, is आलू. Yes, you got it right. आलू एक ऐसी चीज है जो इंडियन किचन का अनऑफिशियल सुपर हीरो है ना? आलू पराठा, उसमें है आलू समोसा, उसमें भी आलू, आलू टिक्की, yes, and French fries, obviously, yes. और जब कुछ समझ ना आए कि डिनर में क्या बना है, तो इंडियन मॉम्स आर लाइक द एवरग्रीन आंसर, आलू बना दो। आलू के साथ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये वेजिटेबल ऐसा है कि इसने ऑलमोस्ट हर डिश में घुसने की एबिलिटी डेवलप कर ली है, कभी फिलिंग बन के, कभी साइड डिश बन के, तो कभी स्नैक बन के। आलू लिटरली सेज, या फिर वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, मुझे कहीं भी डाल दो, आई एल एडजस्ट। सो वो बिल्कुल उसी गेस्ट की तरह है जो शादी में बिना इन्विटेशन के कहीं पर भी और कहा भी एडजस्ट हो जाता है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे